0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

0: ये सीन होएगा ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी होएगा ये नहीं मालूम था। देखो देखो कैसे अपना नाम उसके दिल पर लिख रहा है। देखो
1: दिल पर थोड़ी लिख रहा है, हाथ पर लिख रहा है।

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह के 6 बजे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है। संध्या नमस्कार आपको अभी।
2: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। सुबह के 6 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। एक कठिन आर्थिक स्थिति में धैर्य और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता दिखाना बहुत जरूरी है, ये मुख्य संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम कुलाम ने महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के अवसर पर दिया। ये कार्यक्रम कल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में नए विकल्पों को तलाशना बहुत ही आवश्यक है। उनके अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए देश की एकता और अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिक शिक्षा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिविक एजुकेशन के पुराने प्रोग्राम से प्रेरित होगा, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट के छात्र 2 सप्ताह के लिए भाग लेते थे। अधिकारी उन 5 हज यात्रियों के लिए नए वीजा की मंजूरी दिलाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं, जिनकी उम्र 15 साल से कम है। खबर ये है कि इनमें से 2 बच्चों को वीजा मिल गया है, क्योंकि वे इस रविवार को उड़ान भर रहे हैं। आवास तथा भूमि मंत्री शकील मोहम्मद, जो हज दौरे से जुड़े मामले के भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने शनिवार की रात तक सकारात्मक उम्मीद जताई है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि वे सऊदी अधिकारियों और इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र यानी कि ICC की टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं। तमाहे के मुद्दे का सामना निकल का समाधान निकलता जा रहा है, और पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। पर्सी यिपटोंगा, जिन्होंने अब तक अपने व्यक्तिगत खर्च पर इस नुकसान को रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि अब अधिकारियों ने इस स्थिति की जिम्मेदारी लेने और उचित कार्रवाई करने का ऐलान किया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी के चलते ईरान को तेल निर्यात से होने वाली लगभग $5 अरब की कमाई ठप हो गई है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर के उस पार, खासकर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे आप विस्तार पूर्वक का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आज रविवार 3 मई की भोर की बेला आप सुनने वालों के नाम करते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस जहां में कोई दौलत नहीं होती, यही शांति की दौलत आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इस सुबह की बेला में आप सुखमय रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए आप लोगों के नाम करते हैं हम सर्वप्रथम आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। वैदिक वाणी कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के पंडित देबू जी की प्रस्तुति में सुनिएगा।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ओम उपनः सुनवो गिरः शृण्वन्त्वस्य अमृतस्य ये सुमृळिको भवन्तु नः। समस्त श्रोताओं को वैदिक वाणी कार्यक्रम में आर्य सभा का सेवक पंडित श्याम धनेश्वर देबू का सादर सप्रेम नमस्ते। वेद वाणी, वैदिक वाणी ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का संदेश है। हर एक मंत्र में ईश्वर बैठा है आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए अनिवार्य रूप से वेद पाठ करना चाहिए। प्रत्येक घर में प्रतिदिन वेद पाठ होना चाहिए। जब हमारे घरों में यज्ञ और हवन होंगे, स्वाहा और स्वधाकार की ध्वनि उठेगी, वेदों का उद्घोष होगा, तभी हमारे पुत्र पुत्री वेद ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकेंगे, सुन सकेंगे, श्रवण कर सकेंगे। वेद सभी ज्ञान और विज्ञान का मूल है और अखिल शिक्षाओं का भंडार है। जब हमारे पुत्र पुत्री वेद के इन मंत्रों को श्रवण करें, सुनें, तो उनका जीवन कल्याणमय होगा। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पुत्र पिता के अनुकूल चलने वाले हों और माता के साथ सम्मान मन वाले हों, तो ये शिक्षाएं उनके जीवन में आएगी। इन वैदिक शिक्षाओं पर आचरण करते हुए वे अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए सुख शांति और मंगल का वास करा सकेगा। इसलिए वैदिक वाणी में वेद की वाणी को सुनना चाहिए। वेद और उपनिषदों का एक अमर संदेश है, ओम असतो मा सद्गमय, तमस्यो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय, हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो कि हम असत्य से, झूठ से, मिथ्या से हटकर सत्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही वेद है, सत्य ही जीवन का सार है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से, हमें अंधेरा से निकाल कर, तम से निकाल कर प्रकाश की ओर प्रकाशित करें, ताकि हम असली ईश्वर, सच्चे ईश्वर को, सच्चे धर्म, सच्ची संस्कृति को प्राप्त कर सकेंगे, जो विश्ववारा है। और अंतिम है मृत्योर मा अमृतम गमय, हे प्रभु हमें मृत्यु से अर्थात दुखों से दूर करते हुए, रक्षा करते हुए सुख का संसार प्रदान कीजिए जो अमृतमय हो। आज हम जीवन मृत्यु पर चिंतन करेंगे। वेद क्या कहता है, मनुष्य का जीवन क्या है, हमें कैसे जीवन मिला है, क्यों मिला है, किसने दिया है, क्यों दिया है, क्या हम उन उद्देश्यों की पूर्ति में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। संसार में अनेक बहुमूल्य पदार्थ है, उनमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ और अमूल्य है, यह भगवान का सर्वोत्तम देन है। जीवन की तुलना में सांसारिक सुख भोग, धन संपत्ति आदि अच्छा है, दुनिया को समाप्त

0: करने के लिए ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, जिससे हम खाते पीते हुए अंतिम समय तक जी सके। दुनिया के समस्त सुखों में शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। शरीर का सुख के साथ ही आत्मा सवार करता है शरीर के अंदर और प्रगति करते हुए जीवन को आगे बढ़ाता है। शरीर से ही जगत के सुखों को भोगा जा सकता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो सभी भोग पदार्थ, धन दौलत, अर्थव्यवस्था सब बेकार है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ बुद्धि है। शरीर रोगी होने पर सब चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शरीर को ही भोगना है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। संसार यात्रा शरीर से ही पूरी होती है। इस शरीर को दैवी नाव और धर्म का साधन कहा गया है। यह दुर्लभ मानव योनि को ईश्वर ने हमें 84 लाख के योनि के अंदर हमें प्रदान किया और हमें आशीर्वाद दिया पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने के लिए। अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद सौभाग्य से यह शरीर मिला है। जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उनमें मानव शरीर की महत्ता सबसे अधिक है। मनुष्य शरीर की रचना और क्रिया शक्ति बड़ी अद्भुत और अनुपम है। परमपिता परमात्मा की सृष्टि का सर्वोत्तम तथा चमत्कारी नमूना मानव देह है। मानव के बिना सृष्टि का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सृष्टि का सौंदर्य, मनुष्य ही सृष्टि का सौंदर्य है। मनुष्य से ही संसार की उपयोगिता है। सृष्टि की समस्त योनियों में मानव जीव सर्वोत्तम, अमूल्य तथा दुर्लभ माना गया है। जीवन अनमोल रत्न है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ यदि कोई है तो वह मानव शरीर है, मानव जीवन है। इसी से संसार के रिश्ते नाते तथा संबंध है। जगत की सब चीज़ों में धन और सुख भोग के पदार्थ तराजू में रख दिया जाए और मानव शरीर को एक तराजू में रख दिया जाए तो मानव शरीर सबसे भारी होगा, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो किससे भोग करेंगे। यह सुंदर संसार प्रभु ने मानव के लिए बनाया है। जीवन से ही जगत है। नर्तन पाना अपने में सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन की कीमत उससे पूछो जिसके पास जीवन नहीं है, जो मर चुके हैं। टेढ़ा मेढ़ा रोगी वह दुखी व्यक्ति भी हर हाल में जीना चाहता है। यह जिंदा है तो सब सुख भोग कर सकेगा, जीवन में का आनंद प्राप्त कर सकेगा। यह जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है और परमपिता परमेश्वर की देन है। मनुष्य इस मनुष्य शरीर के अंदर ही हम रहकर प्रगति कर सकते हैं। 84 लाख योनि में सबसे ऊंची पदवी मानव जीवन की है। संसार में किसी भी पशु पक्षी का सिर इंसान की तरह ऊपर की ओर नहीं है, सभी का सिर नीचे झुका हुआ है। इसका कारण यह है कि पाप का सिर नीचे हमेशा झुकता है और पुण्य का सिर मानव का ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है, देवत्व को प्राप्त करता है। इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर ने मनुष्य को 84 लाख योनि में सबसे उत्तम और भद्र बनाया। मनुष्य शरीर में श्वास प्रक्रिया सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने चमत्कार के रूप में दे दिया कि श्वास लो और श्वास छोड़ो। और श्वास के लिए ईश्वर ने प्यू ऑक्सीजन वाला वायु वायु देवता के जरिए प्रदान किया, जिससे मनुष्य की रक्षा हो सके। प्रभु ने इस शरीर रूपी मिट्टी के खिलौने में अनूठे ढंग से श्वासों का हिसाब, श्वासों की सरगम को जोड़ा है। श्वास लो, श्वास छोड़ो, प्राण वायु लो, अप्राण को निकालो, प्यू ऑक्सीजन लो और कार्बनिक एसिड गैस को निकालो। और इसको शुद्ध करने के लिए ईश्वर ने कहा प्रथम मंत्र में, अग्नि मिदे पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृद्विजम, कि तुम अग्नि को मैं दे रहा हूँ, अग्नि देव के जरिए यज्ञ करो, यज्ञ के जरिए अनेक प्रकार की औषधियों को जलाओ और वातावरण वायु को एकदम प्यू बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जिससे तुम अपने जीवन को बड़े आराम से जी सकोगे। मानव का शरीर ईश्वर की सबसे बड़ी देन है और उनको इसलिए बारंबार धन्यवाद देते हैं। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए भारतीय जीवन दर्शन निरोगता, सुख, शांति, प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक जीने की शिक्षा प्रदान की। सभी सुख शांति से जीना चाहते हैं, मगर जीने की कला से अनभिज्ञ हैं। जीना एक कला है, एक गुण है, सभी को जीना नहीं आता। भारतीय संस्कृति में जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक बड़ा व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण रूप प्रदान किया गया है। ईशोपनिषद का अमर संदेश है कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर का दिया हुआ वरदान को प्राप्त करो और जियो। श्रेष्ठ कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की कामना करो। निरोग, उद्देश्यपूर्ण, सार्थक जीवन, योजनापूर्ण ढंग से पूर्ण आयु भोग कर जाने का संकल्प मन में रखना चाहिए। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, जो अवसर मिला है उसको व्यवस्थित, समझदारी, आकर्षक और सुंदरता से जीना चाहिए। सबसे मिलकर, सबको प्यार बांटते हुए, सबके दुख दर्द में भाग लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। उपकार और परोपकार करते हुए अपने जीवन को एक उदाहरण बना लो। यदि मनुष्य को जीना आता है तो यह जीवन, जगत, घर, परिवार और शरीर सब स्वर्ग के समान लगेगा, क्योंकि ये सुनियोजित है। सुखी जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ विचारों की जागरूकता होनी चाहिए। विचारों से ही व्यक्ति जीवन और जगत को, जीवन को स्वर्ग बना सकता है और जीवन को नरक बना सकता है, उनके कर्मों से, उनके व्यवहारों से। कवि कहता है, उठता है जब विचार तो उठता है आदमी, गिरता है जब विचार तो गिरता है आदमी। परमात्मा ने सृष्टि में कोई भी वस्तु दुख के लिए नहीं बनाई है, सब सुखी जीवन के लिए, सुख देने के लिए। हम उसको सदुपयोग करके सुख प्राप्त करते हैं और दुरुपयोग करके दुख प्राप्त करते हैं। अधिकांश व्यक्ति दुख, कलह, संघर्ष एवं अशांति में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जीवन परमात्मा का अद्भुत वरदान है। आम आदमी से पूछो क्या हाल है, तो ज़्यादातर लोगों को यही उत्तर मिलता है, जीवन कट रहा है, हम जी रहे हैं, जब तक श्वास है हम इस शरीर को खींच रहे हैं। लेकिन असल में जीवन ये नहीं है, जीवन को हम लोगों ने ऐसा बर्बाद कर दिया। जीवन तो मिला है, वेद कहता है, हंसते गाते मौज मनाते प्रसन्नता निरोगता उमंग एवं सुख शांति से जीवन को उद्देश्यपूर्ण करते हुए जियो। संसार को स्वर्ग बनाओ, सांसारिक सुख भोगो। सुख भोगने का केंद्र है घर, सुख पाने का केंद्र घर है, घर माना गया है। घर यदि हमें शरण प्रदान करके सुरक्षा और सुविधा देता है तो घर में सुख, शांति और अपनत्व का केंद्र बन जाता है। सच्चा सुख, प्रसन्नता और शांति घर से ही मिलते हैं। यदि घर में शांति नहीं है तो बाहर कदापि शांति नहीं मिलेगी। जिन्हें घर में सुख, शांति तथा चैन नहीं मिलता है, वे बाहर में भी उनको शांति और सुख नहीं मिलेगा। घर को होम कहा गया है, हमारी संस्कृति होम संस्कृति है, गृह संस्कृति। घर में रहकर शांति से रहो, जियो और आगे बढ़ो। हमारी संस्कृति होटल संस्कृति नहीं है कि होटलों में जाओ, मांग करो, खाना वाना मंगाओ, किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, प्यार नहीं उसके अंदर। जबकि हमारे घर वाली पत्नियां भोजन तैयार करते समय यज्ञ करती है, अग्नि को जलाकर सब्जी, तरकारी, दूध, भात, सभी सामान बड़े प्रेम के साथ, उसके अंदर पत्नी का प्रेम है, घर परिवार का प्रेम है, वो मधुर बन जाता है, लाभकारी होता है। वहीं खाना होटल में खाएंगे तो होटल वाले के प्यार है, उनको कहाँ प्यार है आपसे, वो तो कॉमर्स कर रहा है, वो तो आपका पैसा लेकर जो चाहे वो आपको प्रदान कर रहा है। होटल का खाना अच्छा नहीं है, घर परिवार का खाना जिसमें नारी का प्रेम है। घर का मूलाधार नारी होती है, घर नारी से बसता तथा उजड़ता है। नारी घर को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है, इसीलिए स्त्री को बहुत आदर देना चाहिए और आदर देते हुए वेद के संदेश को अपनाते हुए जीवन को यापन करो। जो थोड़ा बाकी जीवन रह गया है, जीवन का जो रास्ता है बहुत छोटा है, मिला है प्यार करो, प्यार दो और प्यार लो, सबसे प्यार करो, यही जिंदगी है। वेदों का यही अमर संदेश है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे पंडित देबू जी को।
3: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। एक विज्ञप्ति सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाकवा के निवासियों को सूचित करता है कि एनएचडीसी ग्लेनबर्ग के एक भाग में और आसपास की गलियों में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 3 मई को सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये भी मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। अब चलिए जरा सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता रघुबीर जी से।
4: महाराणा प्रताप दिवस पर आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

सर्मायच्छत्तु उग्रावः सन्तु माहवो अनाग्रिष्या यथा सथ। ओम शांते शांते शांते। हे मेरे वीरों, उठो, आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो। तुम्हारी भुजाएं उग्र हो ताकि तुम कभी पराजित न हो सको। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से महाराणा प्रताप जयंती के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हर साल की तरह इस साल भी हम महाराणा प्रताप जयंती मनाने जा रहे हैं। इस साल 2026 अर्थात आगामी शनिवार 9 मई को महाराणा प्रताप की 486 अर्थात 486वीं जयंती मनाएंगे। रेडियो के माध्यम से यह विशेष कार्यक्रम कल शनिवार 2 मई से शुरू हो चुका है और लगातार 8 दिनों तक चलेगा। हर रोज आप लोग हमारे संस्था के पंडित पंडिताएं एवं आचार्य द्वारा महाराणा प्रताप के विषय पर सुनेंगे। महाराणा प्रताप जी एक वीर शिरोमणि क्षत्रिय थे। उनके जीवन की कुछ अमूल्य बातें हम लोग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, जो कि 9 मई तक चलेगा। और आज ही रविवार 3 मई दिन के 9 से 10 बजे तक मंगल आचरण कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर चर्चा होगी। हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। श्रोताओं, राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जी का जन्म महाराज उदय सिंह एवं माता जयवंता बाई के घर 9 मई 1540 में हुआ था। यह किसको पता था कि यही बालक बड़ा होकर केवल अपनी जन्मभूमि मेवाड़ में ही नहीं, वह वरन सारे भारतवर्ष में अपना नाम अमर कर जाएगा। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में प्रताप जैसा महान वीर और स्वतंत्रता का पुजारी दूसरा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप एक आदर्श राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। राजपूत

0: गुप्तों का राज्य भारत में सूर्यवंशी राजाओं से प्रारंभ होता है। सूर्यवंशी राजाओं में अनेक महान क्रांतिकारी राजा हुए हैं। उन्हीं राजाओं के वंशज राजा दशरथ जी, राम जी, लव, कुश आदि हैं। राजपूत सूर्यवंशी लोग श्री राम के पुत्र लव के वंशज हैं और इसी सूर्य वंश में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राजपूत लोग बड़े साहसी, वीर, निडर, सत्यवादी तथा प्रतिज्ञा के धनी होते हैं। श्रोताओं, हमारे वैदिक साहित्य में वीरता की भावना पग पग पर भरी पड़ी है। हमारे सबसे महान ग्रंथ वेद में शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, उनके प्रति हिंसा वर्ती जाए अथवा दया और अहिंसा, इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सुनिए इस संबंध में वेद का क्या उपदेश है। धूरसि धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम युवस्मान धूर्वती तम धूर्व यम वयम धूर्वाम देवानामसि वहनितम ससनितमम पप्रीतमम जुस्तम तमम देवहुतमम। हे वीर, तू मार सकते वाला है। मार मारने वाले को, मार उसे जो हम निरपराध लोगों को मारता है, उसे मार जिसे हम मारने के लिए कटिबद्ध हैं। तू वीर है, देवजनों का नायक है, तू शुद्धतम है, पूर्णतम है, प्रियतम है, देवों का पूज्यतम है। श्रोताओं, वीरता के साथ राजपूतों में और भी अनेक गुण थे। ये राजपूत दुर्बलों को सताते नहीं थे। राजपूत अपने वचन से कभी नहीं मुकरते थे। कोई उनके साथ उपकार करता तो वे कभी नहीं भूलते थे। यदि कोई उनका विश्वास करता तो उसके विश्वास में वे खरे उतरते थे। यदि कोई उनका अपमान करता तो वे उसे कभी नहीं भूलते और बिना बदला लिए चुप नहीं रहते। राजपूताने की माँ, बहन, बहू और बेटियों भी राजपूतों से साहस, वीरता और तेज में कम नहीं होती। राजपूतानियों अपनी मान मर्यादा रखने के लिए जीते जी आग में बैठ जाती थी, पर विधर्मियों का मुंह भी देखना नहीं चाहते थे। वेद मंत्र में यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक धर्म के मानने वालों में कितनी ऊंच कोटि की वीरता होनी चाहिए। उनकी वीर गर्जना ही ऐसी हो जिसको सुनकर शत्रुओं के दिल दहल जाएं। वे अपने हाथों से ही शत्रु के जबड़ों को तोड़ सके, उसके सिर को फोड़ सके, युद्ध क्षेत्र में उसका मुख मोड़ सके। वैदिक आर्य शक्ति के जलते हुए अंगारे हैं। वे शक्ति और बल से महाराक्षस शत्रु को हराना जानते हैं। शत्रु के आक्रमण करने पर उसके हराने के लिए वीरों का साधन शक्ति है, अहिंसा नहीं। वेद मंत्र पुकार पुकार कर कहते हैं कि शत्रु पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, उसको अपने बाहुबल से सर्वथा नष्ट कर देना ही वीरों का धर्म है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी का राज्य वीर पुरुषों के भोगने के लिए ही है, कायरों के लिए नहीं है। श्रोताओं, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक अत्यंत गौरवशाली पात्र थे। उनके त्याग, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अजर अमरता के गौरव तथा मानवता के विजय सूर्य हैं। राणा प्रताप की देशभक्ति पत्थर की अमित लकीर हैं। ऐसे पराक्रमी भारत माँ के वीर सपूत महाराणा प्रताप को राष्ट्र का शत शत नमन। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घर ही मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 3 मई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक कठिन आर्थिक स्थिति में धैर्य और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता दिखाना बहुत जरूरी है, ये मुख्य संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने महाराष्ट्र तथा गुजरात दिवस के अवसर पर दिया। कल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। 5 युवा मॉरिशन हज यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। अब ये किशोर अपनी हज यात्रा अदा कर सकेंगे, इस बात की पुष्टि की है मंत्री शकील मोहम्मद ने। तमागे के मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। 4-6 मई तक मॉरिशस में ओशन असाइजेस का आयोजन किया जा रहा है, जो मॉरिशस ओशन वीक का एक मुख्य हिस्सा है। इन 3 दिनों में समुद्री शासन और समुद्री संसाधनों के टिकाव प्रबंधन के लिए रणनीतिक सलाह मशवरा किया जाएगा। और विदेश में पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान ने एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के दिए हैं संकेत। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि एक कठिन आर्थिक स्थिति में धैर्य और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता दिखाना बहुत जरूरी है, यह मुख्य संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के अवसर पर दिया। ये कार्यक्रम कल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में नए विकल्पों को तलाशना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए देश की एकता और अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिक शिक्षा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिविक एजुकेशन के पुराने प्रोग्राम से प्रेरित होगा, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट के छात्र 2 सप्ताह के लिए भाग लेते थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम को सुनते हैं।
2: Nous vous apprenons tout bon disposition nécessaire. Nous vous apprenons l'économie plus résilient encore. À cause même, nous vous apprenons preuve de solidarité. C'est dans ce contexte sans mal de nous qui m'ont pas le faire bidier là. Pourquoi vous êtes trop content de faire bidier là, moi? Moi, c'est qu'à passer le jour. Et là, je peux dire, mais moi, pas passer quand l'époque est difficile. Moi, les autres, je dis, là, c'est là. Moi, moi, pas c'est là, c'est bien. Parce que c'est bien qu'on ait que même pour... Il ne fallait pas tout l'économie là aussi. Nous, bien qu'on fait balance. Donc, c'est ça qui nous bien d'être bien. Qui met pour faire, pour qu'on va faire, nous, gouvernement, bien résilient. Si moi, gagne ça pétrole de Congo là, et nous, gagne de l'Inde, il y a un avantage pour nous. Je suis convaincu, moi. Si nous mettons la tête ensemble, nous travaillons dans l'unité, nous comprenons. Nous avons une différence. Mais là, nous avons un danger devant. Le danger, là, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour X, il n'est pas pour Y, c'est pour tout Mauricien qui peut vivre là. Nous devons nous adapter et faire des morts, trouver une solution contre les difficiles.
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। इस समारोह के दौरान मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के प्रधान बलराज नारू ने फेडरेशन के विस्तार कार्य के लिए सरकार द्वारा 50 पेयश जमीन दान करने के लिए उसके प्रति आभार प्रकट किया। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। उनको सुनते हैं।
3: Le gouvernement, à la requête de la fédération, nous payait un lopin de terre de 50 PS à côté le Maharashtra Bowen. For parking facilities, beaucoup de Nyavar Prime Minister ou gouvernement qui croient dans l'unité de la diversité, nous à côté, du monde un peu oublié parfois, en 2002, quand nous recevons nos lettres Vintent dans sa fameuse Triangle Square là, nous touchons, les bon, vous étiez sa Premier ministre, parce que c'est étudiant ça, nous touchons socio-culturel qui se démord nos bâtiments.
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि पांच युवा मॉरिशस हज यात्रियों के लिए राहत की खबर है, सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। अब ये किशोर अपनी हज यात्रा अदा कर सकेंगे। ये जानकारी कल शाम आवास तथा भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने दी है, जो हज मामलों के भी जिम्मेवार हैं। सऊदी अधिकारियों ने अपनी पूरी नीति को फिर से लागू कर लिया है, जिसके तहत अब यात्रा के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई है। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं।
4: Et là, tu peux même contempler pour cancel le voyage de Hajj. Alors, Moufine, dès le matin, prends contact avec le ministre du Hajj de l'Arabie Saoudite. Et moi, très heureux pour dire que Moufine gagne l'appel pour le docteur Hassan Findiamoi, qui tous ses 25 enfants-là, ils peuvent bien réouvrir le système électronique, le portal, pour qu'ils soient capables de faire la demande de Hajj, de visa à nouveau.
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। रोची, कोको, सिराज, उरीत और बाका शागस द्वीप समूह के इन पारंपरिक व्यंजनों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आम जनता को शागस समुदाय के इन स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रुप रेफ्यूजी शागस द्वारा पॉइंट साबा स्थित उनके मुख्यालय में किया जा रहा है। शागस समुदाय के नेता ओलिविए बोंकुल्ट ने बताया कि ये आयोजन केवल अपने द्वीपों पर वापस लौटने के उनके अधिकार की मांग के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोगों को उनकी विरासत और संस्कृति से रूबरू कराने का एक सुनहरा मौका है। इसके अलावा इस आयोजन से इकट्ठा होने वाले पैसे का इस्तेमाल शागस वासियों के समूह की जल्द ही होने वाली यूके की यात्रा के खर्च के लिए किया जाएगा। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि तमाहे के मुद्दे का समाधान निकलता दिख रहा है, पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। पैसी यिपटोंग, जिन्होंने अब तक अपने व्यक्तिगत खर्च पर इस नुकसान को रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि अब अधिकारियों ने इस स्थिति की जिम्मेदारी लेने और उचित कार्रवाई करने का ऐलान किया। तीना बुद्ना की रिपोर्ट।
5: Le ministre Bakwan est venu personnellement avec tous ses chefs de département, le directeur de l'environnement, etc. Donc l'invinine, une constatée, il est là. Il dit, moi, qui m'ont pensé, moi? Parce que c'est moi qui a travaillé illégalement pendant 10 ans avec mon argent. Et les derniers jours, c'est, j'ai aidé le ministère à faire son travail. Il dit, béguette ça. Mon équipe continue, comme on va nous dire, quand on envoie une lettre, ou pas, pour faire un an, ou là, on dépend, nous, ce qu'à l'aise, de tout est cover. Seulement, toujours garde-moi.

0: comme, disons, représentant du village. Moi, j'habite là depuis 1969. Et dans d'autres mots, la vie. Et là, le secteur privé m'a remercié, General Construction, qui nous rentre en jeu. Là, les autres, donc, le secteur privé a compris le drame. Ils sont prêts pour travailler avec le ministère de l'Environnement.
1: इस वक्त आप ऐसी युक्तियों को सुन रहे थे। आपको बता दें कि तमागे समुद्र तट पिछले कई हफ्तों से भारी इरोजन का सामना कर रहा था और ऊंची लहरों तथा तमागे की नदियों के मुहाने पर तेज बहाव के कारण ये स्थिति और गंभीर हो गई है। पीएसी यिपटोंग के अनुसार अगले बुधवार और आने वाले सप्ताहांत पर समुद्र में और भी ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तट और भी कमजोर हो सकता है। हालांकि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर उस जगह के एक हिस्से को स्थिर करने और बीच के बचे हुए हिस्से को बचाने में सफलता पाई है। जहां एक ओर पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश और समुद्री ज्वार ने तमागे समुद्र तट के इरोजन की गति को तेज कर दिया है, वही जोआना बेरोंजे का मानना है कि इस नुकसान का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता था। उनके अनुसार इस संवेदनशील तट पर इरोजन एक पुरानी घटना है जिसे सालों से दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। हाल ही में किए गए निर्माण कार्यों में हुई चूक जो तट के बहुत करीब किए गए थे। जोआना बेरोंजे ने इस मामले में निगरानी की कमी की निंदा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बारे में स्थानीय निवासियों, वैज्ञानिकों तथा तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले जानकारों के साथ कई विचार विमर्श नहीं किया गया है। उनको सुनते हैं।
2: समुद्री इरोजन की समस्या नई नहीं है, ये बहुत समय से है। इस विषय पर अध्ययन भी हुए हैं, जिनसे पता चला कि कंक्रीट के कठोर ढांचों को पीछे हटाना चाहिए। फिर एक ठेकेदार यानी कंट्रैक्टर की गलती हुई जिसने वहां पर खुदाई की, क्योंकि हर साल रेत का एक ढेर बन जाता है जो नदी के पानी को बहने से रोकता है, लेकिन जरूरी देखरेख नहीं हुई और काम समुद्र के किनारे के बहुत पास किया गया। इससे स्थिति और खराब हो गई और तट पर और ज्यादा इरोजन हुआ। यहाँ संचार की कमी है, नागरिक समाज के साथ सहयोग की भी कमी है और आवश्यक कदम समय पर नहीं उठाए गए। ये एक तरह की निष्क्रियता है जिसे हम काफी समय से देख रहे हैं। दुर्भाग्य से जब आप जूनियर मंत्री होते हैं तो ये एक वास्तविकता होती है कि निर्णय आप नहीं लेते।
1: मॉरिशस अब अपने पर्यटन क्षेत्र से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अपने समुद्र तटों और लगूनों के अलावा देश अब अपनी ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने और इस क्षेत्र को एक मजबूत ढांचा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी दिशा में 4 से 6 मई तक मॉरिशस में ओशन असाइजेस का आयोजन किया जा रहा है, जो मॉरिशस वी ओशन वीक का एक मुख्य हिस्सा है। इन 3 दिनों में समुद्री शासन तथा समुद्री संसाधनों के टिकाव प्रबंधन के लिए रणनीतिक सलाह मशवरा किया जाएगा। ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सरकार, निजी सेक्टर, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हुई थी। साल 2026 की शुरुआत में तकनीकी विशेषज्ञों ने मिलकर सुझावों को और बेहतर बनाया है। 10 अप्रैल को एक राष्ट्रीय सारांश रिपोर्ट जारी की गई जो भविष्य की ब्लू इकोनॉमी 2.0 के रोडमैप का आधार बनेगी। टीना बुदना की रिपोर्ट।
2: ये दस्तावेज महासागर रणनीति की मुख्य रूपरेखा 3 स्तंभों पर आधारित करता है, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, ब्लू फाइनेंस और समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग। प्राथमिकताओं में सिंगल विंडो परमिट सिस्टम, राष्ट्रीय मरीन डेटा प्लेटफॉर्म, तटीय गतिविधियों पर मजबूत नियंत्रण, एक्वा कल्चर का विकास, सस्टेनेबल फिशरीज और नीति निर्माण में विज्ञान यानी साइंस की बढ़ती भूमिका शामिल है। मॉरिशस अपनी 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ बिग ओशन स्टेट के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पहले से ही लगभग 10% GDP का हिस्सा है, लेकिन चुनौतियाँ भी बड़ी है।

0: प्रशासनिक देरी, समन्वय की कमी, अधूरा डेटा और बिखरी हुई गवर्नेंस। एनजीओ और साइंटिस्ट सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा और स्पष्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मांग कर रहे हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है, फिशरीज, ऊर्जा, जलवायु, बायोडायवर्सिटी और पर्यटन अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जलवायु दबाव तथा कोस्टल इरोजन से जूझते इस द्वीपीय देश के लिए समुद्र अब सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि शासन की परीक्षा बन गया है। ये आयोजन मॉरिशस ओशन वीक यानी 4-9 मई 2026 के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य देश की ओशन स्ट्रेटेजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है।
1: महात्मा गांधी संस्थान के सुब्रमण्यम भारती थिएटर लेक्चर थिएटर में 2 मई 2026 को हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा मंच संचालक का यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी कौशल पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह इस श्रृंखला का दूसरा बैच था जिसमें हिंदी के विद्यार्थी, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी अनुभवी संचालक तथा उभरते हुए उत्साही एमसी ने भाग लिया। दोनों सत्रों को मिलाकर कुल 250 प्रतिभागियों ने इस पहल से लाभ उठाया। अशिता रघु की रिपोर्ट।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
3: मंच संचालक या कहें मास्टर ऑफ सेरेमनी, वह एक व्यक्ति जो पूरे कार्यक्रम का चेहरा और आवाज होता है और भूमिका दर्शकों का स्वागत करने से माहौल बांधे रखने तक पूरी जिम्मेदारी उठाता है तथा अपने शब्दों, हाव भाव और कभी कभी हल्के फुल्के हास्य के जरिए दर्शकों को सक्रिय और रुचि बनाए रखता है। इसी विषय पर आधा दिन चली एक कार्यशाला में प्रतिभागियों को भाव भंगिनी, मंच पर नियंत्रण, प्रोटोकॉल की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
4: पहले से तैयारी करना एक अत्यंत आवश्यक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि तैयारी करने का समय नहीं मिलता, तो क्या हम अच्छे एमसी नहीं हैं? ऐसा नहीं होता। चाहे वह शैक्षिक कार्यक्रम हो या मनोरंजक, कुछ भी, जब आप वहाँ पर जाते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
3: देश के सामाजिक संगठनों के अनुभवी एंकरों ने भी नई टेक्निकों पर नियंत्रण लाने की बात की।
5: हाफ दी सेशन चला, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी के जिस स्किल में वो बहुत लाभदायक हैं। जैसे हमें पता नहीं था कैसे पब्लिक को हम एंगेज रखें और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होता है और वो जो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, किस तरह से हमें उसको लेकर चलना चाहिए।
6: मैं समाज सेवा में बहुत रुचि रखता हूँ। कभी कभार मुझे मंदिरों में बुलाया जाता है प्रवचन करने के लिए और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टिप्स मिले हैं जो शायद यूट्यूब, गूगल या ChatGPT पर भी उपलब्ध नहीं है। इससे अभ्यास के पश्चात मैं बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाऊँगा, विशेषकर जब मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया जाएगा।
3: कार्यशाला के माध्यम से मंच संचालन का डर व इस वाक कौशल पर पकड़ बनाए रखते हुए प्रभावशाली संप्रेक्षण की आवश्यकता पर भी बल डाला गया।
7: इसका मूल उद्देश्य यह है लोगों को उचित तकनीक सिखाना कि अगर आपको कोई हिंदी का कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे कहीं भी आप खड़े हो जाएं मंच पर और आपको हिंदी में बोलना है, तो उचित भाव भंगिमा के साथ उचित शब्दों का चयन करते हुए आप उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। हम बता रहे हैं कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से खड़े होना है, आपको किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करना है, क्योंकि मेरा मानना है बिना ट्रेनिंग, बिना उचित शिक्षा के आप कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन नहीं कर सकेंगे।
3: कुल मिलाकर ये कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित हुई जिसने उन्हें एक सफल और आत्मविश्वासी मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए नई दिशा दी।
1: विदेश मंत्रालय के ह्यूमन राइट्स डिवीजन ने गुरुवार 30 अप्रैल को पोर्टलवी में नेशनल मैगजीन फॉर रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप की वार्षिक बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य है मान

0: मानव अधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में मॉरिशस के प्रयासों को और मजबूत करना। इस अवसर पर क्रियोल मॉरिशियन भाषा में दो पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। इनका विषय नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार हैं। इन प्रकाशनों का लक्ष्य मानव अधिकारों की जानकारी को आम जनता के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाना है। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री रितेश गामफल, जूनियर मंत्री राजन नौसिंगन, क्रिल स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष ओनू कपूरान और कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुई। मंत्री रितेश गामफल के बयान पर विवरण गीता सुनारायण का।
1: Aussi, nous avons saisi l'occasion pour lancer de la version créole.
2: हमने क्रियोल में दो कन्वेंशन लॉन्च किए हैं। एक सभी तरह के भेदभाव को मिटाने से संबंधित है और दूसरा देश के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि हम सभी तरह की संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं, सभी तरह के कन्वेंशन पर, लेकिन इन्हें अमल में लाना भी जरूरी है। कभी कभी भाषा एक बाधा बन जाती है। ज्यादातर समझौते अंग्रेजी या फ्रेंच में होते हैं। हमने उन्हें क्रियोल भाषा में अनुवाद किया है ताकि सभी मॉरिशन अपने अधिकारों को जान सके और आश्वस्त कर सके कि देश में इन्हें लागू किया जा रहा है।
1: Et vous êtes capable aussi de rassurer que ce droit-là peut être pratiqué dans le pays.
0: Quand... दोपहर को मोका के तिल्फे इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक 4 साल के बच्चे की अपनी ही पारिवारिक पुल में गिरने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय स्विमिंग पूल में गिर गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए बच्चे की माँ से पूछताछ की। पोस्टमार्टम के अनुसार बच्चे की मौत पानी में डूबने के कारण दम घुटने से हुई। अभी सर्दी पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन बाजारों की गलियों में इसकी आहट सुनाई देने लगी। क्यूपिप में दुकानों की खिड़कियां अब नए रंग रूप में दिखने लगी। स्वेटर, कोट और सर्दी के अन्य सामान धीरे धीरे दुकानों की शोभा बढ़ा रही है। व्यापारियों ने समय से पहले ही अपना नया स्टॉक जमा कर लिया। व्यापारिक रणनीति और ग्राहकों की शुरुआती खरीदारी के बीच शहर में धीरे धीरे सर्दियों का माहौल बनने लगा है। और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी के चलते ईरान को तेल निर्यात से होने वाली लगभग $5 अरब की कमाई ठप हो गई है। ईरान युद्ध से शुरू हुए 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और दुनिया का सबसे अहम रणनीतिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी तब से प्रभावित है। इस मार्ग से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। सामान्य परिस्थितियों में रोजाना लगभग 140 जहाज इस रास्ते से 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद लेकर गुजरते हैं। यही नहीं, वैश्विक जरूरत का लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से सप्लाई होती है। एक तिहाई यानी कि 33% हीलियम और यूरिया जैसे अहम वस्तुओं की आपूर्ति यहां से होती है। युद्ध विराम के दौरान भी हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं और ईरान के साथ साथ अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी के चलते इस मार्ग से एक भी जहाज नहीं गुजर पा रहा है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दक्षिणी तथा पश्चिमी लगुन के उस पार न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:26 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:47 पर। चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। एक कठिन आर्थिक स्थिति में धैर्य और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता दिखाना बहुत जरूरी है, ये मुख्य संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के अवसर पर दिया। कल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। 5 युवा मॉरिशस हज यात्रियों के लिए राहत की खबर ये है कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा को लेकर अपना फैसला बदल लिया है। अब ये किशोर अपनी हज यात्रा अदा कर सकेंगे। तमाके के मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। 4 से 6 मई तक मॉरिशस में ओशन साइज़ का किया जा रहा है आयोजन, जो मॉरिशस ओशन वीक का एक मुख्य हिस्सा है। इन 3 दिनों में समुद्री संसाधनों तथा शासन के टिकाऊ प्रबंधन के लिए रणनीतिक सलाह मशवरा किया जाएगा। और विदेश में पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के दिए हैं संकेत। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
3: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। हाउसिंग लेन पेरू के लेन बेलोम में, हाउसिंग स्टेट पेरू के लेन बेलोम में 78 साल की 78 years old की श्रीमती देवंती इटू पैदाइशी नाम दौलतिया और जिन्हें सब लोग सुंदरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय इटू के घर हाउसिंग स्टेट पेरो के लेन बेलोम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते बेजिकाप किशमिशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कालीमाई रोड लागोजा न्यू ग्रोव में 89 साल की 89 years old की श्रीमती सावित्री सिन्हन पैदाशी नाम चितामन और जिन्हें सब लोग सुशील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर कालीमाई रोड लागोजा न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मऊदालबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर बी नौ सीते बालिसों रोजबेल में 60 साल की 60 years old की श्रीमती दैवंती दशरथ पैदाशी नाम सुचिता और जिन्हें सब लोग फिफिक के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर बी नौ सीते बालिसों रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार

आर के लिए मागीजानी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एंग्री मार्शियल ओकुलेमे, एंग्री मार्शियल ओकुलेमे 77 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद सिचन, श्री विद्यानंद सिचन जिन्हें सब लोग विद्यानंद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास सिचन के घर एंग्री मार्शियल ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 73 तिल्फे एवेन्यू बेलरोज कैथोबोन में, नंबर 73 तिल्फे एवेन्यू बेलरोज कैथोबोन में 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बीना मोता पैदाइशी नाम अरी और जिन्हें सब लोग अनीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 73 तिल्फिया एवेन्यू बेलरोज कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गीतांजलि रोड त्वाबुचिक त्रियोले में, गीतांजलि रोड त्वाबुचिक त्रियोले में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्री जगदीश बिगू जिन्हें सब लोग जगदीश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर गीतांजलि रोड त्वाबुचिक त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मो मास्काल रोड पिचिराफ्रे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदेव भोला जिन्हें सब लोग बाबुआ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी श्रीमती नेहा लोचन के घर मो मास्काल रोड पे चिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैप मालोरे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 10 AM। रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ओपिमो में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्री राजेंद्र कुमार चतुर सिंह जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ओपिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओपिमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पावे रोड रिवे जुरांपो में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलमत बांटू पैदाशी नाम रुसुन और जिन्हें सब लोग सेवंती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विनय बांटू के घर पावे रोड रिवे जुरांपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिवे जुरांपो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कौलाबू में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती गोकुल पैदाशी नाम उचाईबाव और जिन्हें सब लोग नर्मदा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री दनेश्वर गोकुल के घर कौलाबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्योया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ग्रैंड बाफों लाल माटी में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्री चेतानन जदुनन्नन जिन्हें सब लोग विशाल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर की दो बजे उनके पिताजी श्री अनिरुद्ध जदुनंदन के घर ग्रैंड बाफों लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाल माटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड ब्रिजिवेजिया में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेवती
बलिराम, श्रीमती रेवती बलिराम।

उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। पेशी वेजे रोड कोयराची में 62 साल के 62 years old के श्री देवानंद बुधू जिन्हें सब लोग बेली बेली के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर पिची व्याजे रोदा कोयराची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। लोटस रोड शुमे ग्रीय में 67 साल के 67 years old के श्री प्रेम सिसहाय जिन्हें सब लोग दान पेशेयर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के घर लोटस रोड शुमिघ्रिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवेडी गाली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। देवानी रोड सैमोंटे बिजुकाप में 83 साल की 83 years old की श्री राजेंद्र प्रसाद घोरा जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री शेखर घोरा के घर देवानी रोड सैमोते बिजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलोम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। सेक्शन नंबर 18B द्वारका भारत में सेक्शन नंबर 74 साल के 74 years old के श्री बाल्मिक किशन जिन्हें सब लोग दत्त के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के 5 बजे भारत के समयानुसार वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से उनकी अर्थी वहां से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भारत के दिल्ली शहर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। नंबर 9 एप्सन सूरी यूके में 79 years old के श्री सोमा सुंदरम कापेन जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उन्हीं के घर नंबर 9 एप्सन सूरे इंग्लैंड से उठाकर उनकी अर्थी शुक्रवार 8 मई सुबह के 9:30 बजे इंग्लैंड समयानुसार उन्हीं के घर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रंडल्स पार्क क्रिमाटोरियम सूरे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे 8 May 2026 at 9:30 AM according to UK time। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:09 हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लिश फुटबॉल में हालात चाहे जितना भी हो लाचार, किंतु हौसला है तलवार। आर्सेनल ने चैंपियनशिप जीतने की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम

भाया, अब वो मैनचेस्टर सिटी से 6 अंक और 4 गोल आगे है, किंतु 2 मैच उसने ज्यादा भी खेले हैं। उधर वेस्टहैम यूनाइटेड की हार से टोटेनम हॉटस्पर को मिली एक और जीवनधारा, एक और लाइफलाइन। अब उसकी किस्मत उसी की मुट्ठी में है। तो आज शाम 6:30 बजे फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मुकाबला ओल्ड ट्राफोर्ड में। पर सबसे पहले आज के नतीजे सुनिए। कल इंग्लैंड की प्रीमियर लीग का 35वां सप्ताह जारी रखा गया और कमाल की जीत रही आर्सेनल की। फर्स्ट हाफ में ही 3-0, आर्सेनल 3 फुलहम 3, अंत तक यही स्कोर रहा। हार्दिक बधाई आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा को, लगता है कि इस बार आर पार हो जाएगा। आर्सेनल 3 फुलहम 0, विक्टर ग्योकेरेस का एक डबल और बुकायो साका ने एक गोल स्कोर किया। ये तीनों ही गोल फर्स्ट हाफ में स्कोर किए गए। ऐसे में आर्सेनल अब मैनचेस्टर सिटी से 6 अंक आगे हैं, 2 मैच ज़्यादा भी खेले हैं, पर हौसला एकदम बुलंद है। वुल्वरहैम्प्टन वांडरर्स और सन्डरलैंड ने मैच ड्रॉ किया 1-1। न्यूकासल यूनाइटेड ने आखिरकार अपने सेंट जेम्सेस पार्क में ब्राइटन को 3-1 से परास्त किया। विलियम ओसुला, डैन बर्न और हार्वे बॉन्स का 1-1 गोल। और ब्रेंटफोर्ड ने वेस्टहैम यूनाइटेड को 3-0 से परास्त किया। ब्रेंटफोर्ड के लिए एक पहला ओन गोल, फिर ईगो चियागो की पेनाल्टी और मिकेल डैम्सगार्ड ने तीसरा गोल स्कोर किया, तीसरी कील ठोंकी। सो वेस्टहैम यूनाइटेड ये मैच हार गया। अभी तक वो टोटेनहम हॉटस्पर से 2 अंक आगे हैं, पर टोटेनहम आज अपना लेट मैच खेलकर उसको पार कर सकता है। सब कुछ अब उसी के हाथ में है। टोटेनहम के पास हैं 34, वेस्टहैम के पास 36। आज टोटेनहम हॉटस्पर का मुकाबला एस्टन विला से है, ये भी एक महा मुकाबला साबित होने वाला है। सो आज के मैच इस प्रकार है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुकाबला सुपर संडे के लिए, कहते हैं द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल में सबसे बड़ा मुकाबला, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। ये मैच आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दोनों के बीच केवल 3 अंकों का अंतर है, इसलिए राइवलरी एक तरफ, ये सम्मान और शायद अपमान का भी प्रश्न है। पिछली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को एवजा कर हराया था, इस बार ओल्ड ट्राफोर्ड में क्या होगा सुनते रहिए। ऐसी खबर है कि मैटियस कुनिया वापस लौट आया है ट्रेनिंग पर, आज वो खेलने वाला है ब्रूनो फर्नांडेज और बेन्यामिन सेस्को के साथ। लिवरपूल की ओर से मोहम्मद सलाह घायल है, तो अलिसन बेकी अभी ट्रेनिंग पर लौट नहीं पाया है, सो इसलिए फ्रेडी वुडमैन फिर से गोलकीपिंग करेगा। फ्लोरियन वर्ड्स और लोन स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं। ईगो एकिटी के पहले से घायल है। सो आज शाम 6:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, पर संडे का पहला मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा बोर्नमुथ और क्रिस्टल पैलेस के बीच। और आज का आखिरी मैच ये भी काफ़ी हद तक धमाकेदार साबित होने वाला है, आज रात 10 बजे एस्टन विला वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर। हॉट मुकाबला साबित होने वाला है, क्योंकि टोटेनहम को पार करना है, रिलेगेशन जोन से निकलना है, और एस्टन विला को अपना चौथा स्थान वापस लेना भी है। सो इतना सब कुछ आज शाम के लिए। पर 35वां सप्ताह कल सोमवार को समाप्त होगा 2 मैचों के साथ। कल शाम 6 बजे चेल्सी वर्सेस नॉटिंगम फॉरेस्ट, और कल रात 11 बजे एवर्टन का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी से। सिटी के द सिटीजन्स आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गुडिसन पार्क में हर बार उसने एवर्टन को हराया है, लेकिन इस बार एवर्टन एक नए मैदान पर खेल रहा है, हिल डिकिंसन मैदान। वहां पर क्या होगा देखते रहिए और सुनते रहिए। आर्सेनल 6 अंक आगे हैं, 76 अंक। मैनचेस्टर सिटी 70 पॉइंट्स, लेकिन 2 मैच कम। मैनचेस्टर यूनाइटेड 61, लिवरपूल 58। ब्रेंटफोर्ड छठे पोजिशन पर आ गया है, 51 अंक लिए 51। और आखिर में टोटेनहम हॉटस्पर के पास 34, वेस्टहैम के पास 36, दोनों के बीच 36 का अंक खड़ा है। अभी मुकाबला बाकी है, रिलेगेशन से कौन
नीचे जाएगा। सुनते रहिए और देखते रहिए। स्पेन के लालीगा में एफसी बार्सिलोना को चाहिए केवल अब 2 अंक चैंपियनशिप जीतने के लिए, और शायद ये 2 अंक आज रात ही मिल जाए यदि रियल मैड्रिड अपना मैच जीत नहीं पाया तो, अन्यथा अगले रविवार को 10 मई को द एल क्लासिको में ही एफसी बार्सिलोना चैंपियन बन सकता है। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड ये मैच अगले रविवार को खेला जाएगा। सो बार्सिलोना भी 14 अंक आगे निकल आया है, केवल 2 अंक चाहिए उसको चैंपियन बनने के लिए। कल बार्सिलोना की जीत हुई 2-1 से ओसासुना के विरुद्ध। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, फेरान टोरेस का 1-1 गोल, अलावेस 2, एथलेटिक 4। वेलेंशिया की हार हुई, एथलेटिको मैड्रिड ने उसे एवजाकर 2-0 से परास्त किया। इकेया ल्यूके और मिगुएल क्यूबो का 1-1 गोल, और विलारियल ने लेवांते को 5-1 से हराया। इटली के सेरिया में उदिनेजे 2, टोरिनो 0, कोमो 0, नापोली 0, अटलांटा 0, जेनोआ 0। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी कमाल का स्कोर रहा। बायर्न म्यूनिख के अलायंस अरेना में खेल के आखिर तक इंजरी टाइम के 10वें मिनट पर ही जाकर बायर्न म्यूनिख ने इक्वलाइज किया। इससे पहले वो 3-2 से हार रही थी। लियोन गोरेट्स्का का 1 डबल। आखिर में इंजरी टाइम के 10वें मिनट पर यानी कि 100वें मिनट पर मिकाएल ओलिजे ने इक्वलाइज किया बायर्न म्यूनिख के लिए। बायर्न म्यूनिख 3, हाइडेनहाइम 3, एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट 1, हैमबर्ग एसवी 2, होफेनहाइम 3, स्टुटगार्ट 3, यूनियन बर्लिन 2, एफसी कोलोन 2, वर्डर ब्रेमन 1, ऑक्सबर्ग 3, और बायर लेवरकुसेन ने आरबी लाइप्ज़िग को 4-1 से हराया। पैट्रिक शिक का 1 डबल रहा बायर लेवरकुसेन की ओर से। फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन ने अपना मैच ड्रॉ किया 2-2 लोरियन के साथ। वारेन, ज़ाइर एमेरी और इब्राहिम एम्बाये का 1-1 गोल। ऐसे में पेरिस और रेसिंग क्लब दे लांस के बीच अभी भी 4 अंकों का अंतर है, कुछ भी हो सकता है। कल रेसिंग क्लब दे लांस ने मैच ड्रॉ किया, उसने भी ड्रॉ किया निस के मैदान में 1-1। मैच 1, मोनाको 2, नांत ने ओलंपिक दे मार्सेय को 3-0 से हराया। सो फुटबॉल में इतना सब कुछ हुआ। टेनिस में यूक्रेन की माता कुस्चिक ने अपना पहला टाइटल जीत लिया। कल मैड्रिड ओपन के फाइनल में उसने मीरा एंड्रीवा को 6-3 और 7-5 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल किया। हार्दिक बधाई माता कुस्चिक को। पुरुष वर्ग का फाइनल आज खेला जाएगा विश्व नंबर 1 यानिक सिने और अलेक्जेंडर जेरेव के बीच। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के मायामी ग्रांड प्री 3 घंटों से मुलतवी कर दी गई है। आंधी और तूफान का डर बना हुआ है, इस कारण 3 घंटे बाद ये रेस आज लगने वाली है। कल के क्वालिफाइंग में लैंडो नोरिस की जीत हुई, और कुल मिलाकर बता दें कि जनरल रैंकिंग में फिलहाल मर्सिडीज का किमी एंटोनियली पहले स्थान पर है। वो अपने ही टीममेट जॉर्ज रसल से 7 अंक आगे है। और क्रिकेट की बात करें तो चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल शाम मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। आज इसी आईपीएल में 2 अन्य मैच खेले जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो गुजरात टाइटंस खेलेंगे पंजाब किंग्स के विरुद्ध। क्षेत्रीय स्तर पर रिवे जोंपा में आज सुबह 9 बजे एक इंटर विलेज पेटोंग टूर्नामेंट रखा गया है। रिवे जोंपा काउंसिल जिला परिषद की ओर से ये पेटोंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जो आज सुबह 9 बजे से गांधी स्क्वायर पेटोंग कोर्ट में शुरू होगा। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: 24 hours a day.
1: इस समय 7:19 हुए हैं. ये है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के लिए हम पढ़ते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि अप्पा वाले दिपखेत के सांदुकान इलाके में आज रविवार 3 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्यों के समाप्त होने

0: पर बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई ये बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सूचित करता है कि इन इन इलाकों में भी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पेची त्रिविया के ननलोर लेन, कौंदिजाम्रवाद, प्रिंसेस मोगारेट, चमरू लेन, डाफोडी लेन, बिसेसो लेन, जॉयसरी लेन, मकनमारा लेन, ओल्ड ट्राफोर्ड लेन और रॉयल रोड के एक भाग में आज रविवार 3 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक। पोर्ट लुइस के मेयर बौतरिमी गली, दौतवा, वर्सीपुए और बर्टन गलियों में आज रविवार 3 मई को ही सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फॉरेस्ट साइड के मेलिश स्ट्रीट, डर्बी एवेन्यू, डर्बी लेन, मोसेलमों वालाइडन, मोसेलमों प्यात, पाइडिया लेन और फ्रेडरिक बनफेन स्ट्रीट के एक भाग में आज रविवार 3 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और वाकुआ के क्षमा कीजिएगा और सैंपियर के बॉशेरी रोड, रोसलिन कॉटेज, रिविया बाप्टिस, पेटी वेर्जे और ले पुस इलाकों में आज रविवार 3 मई को ही 8:30 बजे से 3:30 बजे तक, दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये जो काटी हुई बिजली की सप्लाईज है ये सब फिर से बिना पहले से सूचना दिए ही जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, Radio Mauritius पर।
0: लेकर आ गए हैं सुबह का नजराना आपके लिए। 7:23 हुए हैं, हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और आपका हमारा साथ 9 बजे तक होने वाला है। खुश खुश रहिएगा, शांति का अनुभव कीजिएगा, शांति ही शांति रहे आपके जीवन में, सुख ही सुख रहे आपके जीवन में, ऐसी दुआ ऐसी प्रार्थना आपके लिए है। संडे का ये मौसम है, रविवार का ये दिन है और ऐसे में आप लोगों की प्लानिंग तो अच्छी होगी ही होगी। आप लोग अपनी प्लानिंग में सफल रहे, ये हमारी दुआ, ये हमारी प्रार्थना ऊपर वाले से। लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ गाने भी, कुछ प्रोग्राम्स भी, कुछ बातें, कुछ प्यारे प्यारे पल भी। तो चलिए ज़रा हम पेश करते हैं आप लोगों के लिए अगर तुम ना होते मूवी का ये गाना सबसे पहले, ताकि हो मनोरंजन आपका, ताकि गुनगुनाएं थोड़ा सा आप हमारे साथ और किशोर कुमार के साथ। वैसे अगर तुम ना होती मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ को पसंद करने वालों वाले हमारे श्रोताओं में बहुत से लोग हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये गाना तो बहुत ही बहुत पसंद आएगा।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य को डर क्यों लगता है? डर पैदा कैसे होता है? डर से छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं? आइए विचार करें। वेद का मंत्र है, अभयम नह करत्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चात दभयम पुरस्तात दुदराद धराद भयम नो अस्तु। हे भगवन, अंतरिक्ष लोक हमें निर्भयता प्रदान करे। विद्युत और पृथ्वी, ये दोनों हमें निर्भयता का वरदान दें। आगे और पीछे से भय न हो, ऊपर और नीचे से हमको कोई भय न हो। मन के जिस भाव से किसी संकट के आने की या फिर कुछ खोने की शंका होती है, उसे भय कहते हैं। डर के अनेक कारण होते हैं। 10 साल का एक लड़का अपने ही गांव की एक पाठशाला में पढ़ता था। एक दिन शाम को जब स्कूल की घंटी बजी और वह घर लौटने लगा, तब उसके एक मित्र ने उससे कहा, देखो तुम जिस रास्ते से घर लौटने वाले हो, उस रास्ते पर एक ऐसा घर है जो बहुत सालों से बंद है और उस सूने घर में भूत हैं। तुम उस घर के पास से गुजरोगे तो भूत तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। बेहतर है कि तुम कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो, इस प्रकार तुम भूत से बच जाओगे। लड़के ने उत्तर दिया, तुमसे पहले मुझे अन्य दोस्तों ने भी उस सूने घर के बारे में बताया। मैंने इसकी चर्चा अपने माता पिता से की। उनसे मुझे पता चला कि उस सूने घर में जो परिवार रहता था, वह परिवार अब विदेश में बस चुका है। वह घर बहुत सालों से वीरान है, इसीलिए लोग यह बात फैलाते हैं कि उस घर में भूत हैं। जो भी व्यक्ति इसे मान लेता है वह डर जाता है। जो भूत पर विश्वास नहीं करता, वह रोज उस सूने घर के सामने से आराम से गुजरता है। मैं 5 सालों से प्रतिदिन उसी घर के सामने से होकर स्कूल आता हूँ और उसी घर के सामने से होकर वापस घर लौटता हूँ। आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर लड़के ने अपने रोज का रास्ता पकड़ा और कुछ ही समय में वह अपना घर पहुँचा। श्रोताओ, इस संसार में हमें डराने वाले अनेक लोग मिल जाते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करके डर जाता है, वह जीवन भर डरा रहता है। डराने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पशु हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, जब उसका सामना किया जाता है, उसे चुनौती दी जाती है, तभी डर को जीतना संभव होता है। एक घर में 3 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी हुई तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। दुर्भाग्य से 2 साल बाद उसका विवाह टूट गया और उसे भारी डिप्रेशन हुआ। दूसरी बहन ने जब यह देखा तब वह घबरा गई और घबराहट के कारण उसने विवाह न करने का निर्णय लिया। तीसरी बहन भी थोड़ी घबराई, पर फिर भी उसने सोचा कि जीवन में खतरा मोल ना ही होता है, क्यों न एक कोशिश की जाए। यह सोचकर तीसरी बहन ने विवाह किया और सौभाग्य से उसे वैवाहिक जीवन का सुख मिला। अगर वह भी डर जाती तो अपने आप को बांध देती। डर जहाँ समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य जीना आरंभ करता है
और अपने सपनों को सच बनाता है। डर को जीतने का एक बहुत ही सरल उपाय है प्रेम। एक युवक अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। उसके पिता रिटायर हो चुके थे, माता नौकरी नहीं करती थी और छोटी बहनें कॉलेज में पढ़ रही थी। घर को चलाने के लिए और बहनों को पढ़ाने के लिए युवक को नौकरी की ज़रूरत थी। लगातार कोशिश करने के बाद उसे एक होटल में क्लरिकल ऑफिसर की नौकरी मिली। पहला दिन वह होटल पहुंचा तो मैनेजर ने उससे कठोरता से बात की। वह घबरा गया। मैनेजर के कड़क स्वभाव के डर से उसने नौकरी छोड़ने का विचार किया, पर फिर उसे अपने परिवार का ख्याल आया। वह अपने माता पिता और बहनों के लिए कुछ करना चाहता था। परिवार के प्रति उसके प्रेम ने उसे अपने डर पर काबू पाने में मदद की। आज वह युवक उसी होटल में

0: नेचर बन चुका है। प्रेम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे कि मनुष्य डरना बंद कर देता है और ऊंचा उठने लगता है। प्रेम यदि ईश्वर के प्रति हो तो मनुष्य मृत्यु के भय को भी जीत लेता है। महर्षि दयानंद को जब बार बार जहर दिया जाने लगा तब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, स्वामी जी आपको जान से मारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको भय नहीं लगता? महर्षि ने उत्तर दिया, मेरा जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा संबंध भी ईश्वर से ही है, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने समाज को यह जीवन सौंपा है, उन्हीं की इच्छा से इस जीवन का अंत होगा। जब ईश्वर ही मेरे जीवन का निर्णय लेंगे तब इस जीवन को खोने का क्या डर? श्रोताओं, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयता जीवन की सबसे बड़ी अवस्था है। यह संसार उन्हीं लोगों का है जो निडर होते हैं। हम अपने विचारों से, अपनी वीरता से, अपने प्रेम से और ईश्वर पर विश्वास करते हुए निडर बने और जीवन को भरपूर जिएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: इस समय सुबह के 7:39 हुए हैं। चलिए जरा आप लोगों के लिए झलकियां पेश करते हैं।
1: झलकियां
0: जी हाँ, झलक हम दिखाएंगे आपको हमारे रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों की। और देखते हैं कि आज के इस दिन में, आज की शाम, आज की रात्रि में आपके लिए कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं। अभी सुबह के 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। उसके बाद हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। जो भी इवेंट हो आपके आपके परिवार के बीच में, आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आप कौन सा मैसेज अपने परिवार, अपने दोस्तों को देना चाहेंगे। और वो होगा 9 बजे तक। ये प्रोग्राम पैगाम आपके नाम 9 बजे तक चलेगा। और आप अभी से ही मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 5251700 मैसेजेस के लिए। सो फिलहाल हम आपको इतना भी बताएं कि 9 बजे के संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद होगा आज का मंगल आचरण कार्यक्रम। और आज का ये प्रोग्राम होगा विशेष तौर पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की ओर से। 10 बजे सुनिएगा संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद आप उर्दू प्रोग्राम सुन पाएंगे निसार की प्रस्तुति में। 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का तमिल प्रोग्राम, जिसे सुंदरम पेश करेंगे। और राजेंद्र लेकर आएंगे तेलुगु प्रोग्राम दिन के 12 बजे। दिन के 1 बजे मराठी प्रोग्राम सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में। फिर होगा जिन की प्रस्तुति में चाइनीज़ प्रोग्राम 2 बजे। और 3:30 बजे होगा रंगारंग आज का गुजराती प्रोग्राम रत्ना की प्रस्तुति में। 4 से 5 बजे तक पूजा पेश करेंगे आपके लिए आप और हम कार्यक्रम। और 5 से 6 बजे तक तोहर पसीन प्रोग्राम लेकर आएंगी पूजा। सो इस इन प्रोग्रामों के बाद आप सुनिएगा 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन। और फिर 6:30 बजे होगा आज का चाइनीज़ प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में। कलैवानी मुरुगन लेकर आएंगे आज का तमिल प्रोग्राम शाम के 7 बजे। 7:30 बजे आप तेलुगु प्रोग्राम वंदना से सुनिएगा। और शीरीष लेकर आएंगे मराठी प्रोग्राम 7:50 पर, 8:10 पर। प्रभु का नाम लेंगे हम, भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम के जरिए रोशनी की प्रस्तुति में होगा ये कार्यक्रम। और समीर लेकर आएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिले शब रात्रि के 8:40 पर। 9 बजे होगा आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम सुमिता की प्रस्तुति में। और 2 घंटों के इस प्रोग्राम के बाद 11 से 12 बजे तक पुराने गानों का पल होगा सुनहरे पल। और ये प्रोग्राम लेकर आएंगी गिनीशा। सो ये थी एक झलक हमारे रेडियो के प्रोग्रामों के बारे में। और रेडियो होता है मनोरंजन का सिलसिला। सो मनोरंजन आपका हम करते हैं इस बार अगले गाने के साथ। और ये अगला गाना आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। बेशक अग्रीमेंट मूवी का ये गाना।

0: एसीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एसीपी विजय खन्ना, एसीपी।
2: नाम विजय क्या रखा, अपने नाम को सीरियस ले लेने लगा।
3: शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। आज से ये हाथ दोस्त का है, क्रिमिनल का नहीं।
4: मैं इंडिया एक शादी देखने आई थी, मैंने मर्डर देखा है।
5: We print stories, we don't cook.
0: रविवार 3 मई को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जंजीर, 2013 की मूवी जंजीर, रामचरण और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म जंजीर।
6: Ready? Come on! One!

तो जब इस स्टोरी की बात आई है तो चलिए एक छोटी सी कहानी हम शेयर करते हैं आपसे। राघव जी की स्टोरी है ये, राघव जी और राहुल की स्टोरी है ये। राघव जी के आंगन में आम का एक बड़ा सा पेड़ था, उसमें फल भरपूर मिलते थे। छाया की तो बात ही मत कीजिए, छाया से तो उनका घर ही शांत रहता था, ठंडा रहता था और उन्हें गर्मी में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। समय बीतता गया, राघव जी की उम्र बढ़ने लगी। अब साफ सफाई करने का दम नहीं रहा उसमें और साफ सफाई का जिम्मा उनके बेटे राहुल ने उठा लिया और साफ सफाई करने लगा। पत्तों का झड़ना, पक्के आम गिरना, उनको साफ करना बहुत तकलीफ।

तकलीफ सी महसूस होने लगी राहुल को साफ सफाई से। उसने सोचा एक दिन कि इस पेड़ को मैं काट देता हूँ, पत्ते तो झड़ते रहते हैं, साल में बस एक ही बार हमें आम खाने को मिलता है और पूरा साल हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है। राघव जी के लाख समझाने पर भी राहुल ने बात नहीं मानी। उसने पेड़ काट ही डाली और गर्मी का मौसम आया। जब गर्मी का मौसम आया तो घर में इतनी गर्मी होने लगी कि राहुल का दम घुटने लगा। समझ में आया उसको कि पेड़ के होने से घर में कितनी ठंडक रहती थी, हवा तो मिलती थी, ऑक्सीजन भी मिलता था और उस पे घर में ठंडक पहुंची रहती थी। तब उसको एहसास हुआ कि पेड़ काटने से पहले 100 बार सोचना होता है, 100 बार सोचकर ही पेड़ काटने का फैसला लेना पड़ता है, अगर मजबूरी हो तो ये फैसला लिया जाए। प्यारे श्रोताओं, जब हमारे पास कुछ पहले से होता है या जब हमें कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो हम उसे कभी भी दौलत नहीं मानते हैं, उसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। ये पेड़ पौधे ऐसी ही दौलत है हमारे लिए, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इन पेड़ों को काटने से पहले 100 बार सोचिएगा, जहाँ तक हो सके न काटिएगा इन पेड़ों को, बल्कि लगाते जाइएगा पौधे, ताकि हमारा जो पर्यावरण हो शुद्ध रहे, शांत रहे और ठंडक पहुँचाती रहे हमें। बस इस छोटी सी कहानी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारी आपकी ये मुलाकात। आप 8 बजे सुन पाएंगे आज के भोजपुरी समाचार अभी से, और इसके बाद हम फिर से वापस आएंगे लेकर पैगाम आपकी तरफ से, पैगाम आपके नाम शो में।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जा इबखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुन जा शुरू करी जा स्थानीय खबर के संगे। एगो कठिन आर्थिक स्थिति में सबूरी और बदलाव के संगे अपन आपके ढाले के शक्ति दिखावे के बहुत ही जरूरी बाती। इस संदेश काल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम दिलन। उनकर अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के मजबूत बनाए खातिर नवा विकल्प खोजे की चाहिए। उ नागरिक शिक्षा के फिनों से शुरू करे के भी ऐलान करलन। 5 मॉरिशन युवा हज यात्री लोगन खातिर एगो राहत देवे होला खबर मिल गल बाती। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के बगल से 15 बरिस से कमती उम्र के लड़का के वीजा के लेके अपन फैसला बदल देवल गल। अब ई किशोर अपन हज यात्रा सकियन से अदा करे। ई जानकारी काल सांझ के आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद दिलन जे हज मामला के भी जिम्मेदार हवन। सऊदी अधिकारी अपन पुरनका नीति के फिनों से लागू कर दिलन जे करते हैं तो अब हज यात्रा अदा करे खातिर न्यूनतम उम्र के 12 बरिस तय कर देवल गल। काल सांझ के मौका तेलफिया में 4 बरिस के एगो लड़का अपन पारिवारिक स्विमिंग पूल में गिरे से मौत हो गल बाती। ई लड़का खेलते बखत स्विमिंग पूल में गिर गल। उनकरा तुरंते अस्पताल ले जावल गल बकिर डॉक्टर के कोशिश के बावजूद लड़का के नई सकलन से बचावे। एकर चलत पुलिस ई मामला से जुड़ल जानकारी जुटावे खातिर लड़का के माँ से पूछताछ करलन। 4-6 मई ले मॉरिशस में ओशन असाइजेस के आयोजन होवा था जे मॉरिशस ओशन वीक के एगो मुख्य हिस्सा है। ये 3 दिन में समुद्री शासन और संसाधन के टिकाऊ प्रबंधन खातिर रणनीतिक सलाह मशवरा करल जाए। ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हो गल रहल जिसमें सरकारी निजी सेक्टर एनजीओज और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के बीच एगो राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रहल। साल 2026 के शुरुआत में ही तकनीकी विशेषज्ञ मिलके सुझाव के आर जस्ती निमन से बनैलन जा। तो दूसर देश में पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के दूसर शांति प्रस्ताव के खारिज करे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर सख्ती बढ़ावे के संकेत दिलन। ट्रंप होमर्स स्ट्रेट से होवे होला तेल आपूर्ति में आर जस्ती व्यवधान के चेतावनी दिलन। तो एक संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: आवा मरनी के खबर सुन जा। हाउसिंग स्टेट पेरो के लेन बेलोम में, हाउसिंग स्टेट पेरो के लेन बेलोम में 3 कुड़ी 18 बरिस की 78 की श्रीमती देवंती इतु, श्रीमती देवंती इतु पैदाशी नाम दौलतिया और जेकरा सब लोग सुंदरा के नाम से जैसी जानत हलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री विनय इतु के घरे हाउसिंग लेन पेरो के हाउसिंग स्टेट पेरो के लेन बेलोम से उठा के क्रियाक्रम खातिर सहमत है बिजिकाप किश्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM कालीमाई रोड लागोजा न्यू ग्रोव में, कालीमाई रोड लागोजा न्यू ग्रोव में 4 कोरी 9 बरिस के 89 के श्रीमती सावित्री सिन्हन, श्रीमती सावित्री सिन्हन पैदाशी नाम चितामन और जेकला सब लोग और जिनकरा सब लोग सोशल के नाम से जस्सी जानत हलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के 10 बजे, आज दिन के 10 बजे उनकर घरेवे से कालीमाई रोड लाहौजा न्यू ग्रोव से उठा के क्रियाक्रम खातिर मोदालबिया किश्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 a.m. क्षमा करना। नंबर बी नौ सीते बालिसों रुजबेल में, नंबर बी नौ सीते बालिसों रुजबेल में 3 को

बड़ी सर के उम्र में 60 के श्रीमती दैवंती दसौत श्रीमती दैवंती दसौत पैदाशी नाम सूचित और जरा सब लोग फिफिक के नाम से जैसे जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गए बातें उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर घरवे से

Martial Okuleme, Tinkuri Satrabariske, Sosenji Setanke, Shri Vidyanan Sichan, Shri Vidyanan Sichan, Jekra Sabloga, Vidyanan Kinam Si Jesse Janathalan Jan, Kermriti Hogal Batun Karmati, Ajdinki Desbaje, Ajdinki Desbaje, Unker Beta, Shri Vikash Sichan Kigari, Angre Martial Okulesi Utake, Keriakaram Katir, Ali Brion Kishmushan Bumili Jawel Jai, Cremation Today at 10 a.m. Number 73 Telfia Avenue Belle Rose 4 Beaune mais number 73 Telfia Avenue Belle Rose 4 Beaune mais Charcori Charbariske 84 ans que Shrimati Bina Mota Shrimati Bina Mota paida shinam ri aur je kra sab log Anita ke naam se Jesse Janathalan ja unkar mrityu ho gal baat hai unkar maati aaj din ke 10 baje unkar ghar mein se नंबर 73 तिलफिया एवेन्यू बेलरोज 4 बोन से उठा के क्रियाक्रम खातिर शिबेल किशमिशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 10 एएम गीतांजलि रोड 3 बुचिक ट्रियोले में गीतांजलि रोड 3 बुचिक ट्रियोले में तीन कोरी 14 बरिस के उम्र में 74 ans के श्री जगदीश बिगू बिगू जिनकरा सब लोग जगदीश के नाम से जस्सी जानथलन जा उनका मृत्यु हो गल बात है उनकर माटी आज दिन की 11 बजे उनकर घरवे से गीतांजलि रोड थ्वाबुचिक त्रियोले से उठा के क्रियाक्रम खातिर त्यामुनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 11 एएम Montmascal Road Petit Rafremé, Montmascal Road Petit Rafremé, Tinkori Sadbariske, 67 ans que Shri Suryadev Bhola, Shri Suryadev Bhola, jinkara sab log babua ke naam se Jesse Janathalan ja, unkar mrityu ho gal baat hai, unkar maati aaj din ki 10 baj ki aadha, unkar beti Shrimati Neha Lochan ke ghare Montmascal Road Petit Rafre se utha ke kriya karam khatir Cap Malheureux Kishmushan bhumi le jawal jai funeral today at 10:30 AM Royal Road Grand Pointe Pimome Royal Road Grand Pointe Pimome Dukori 19 bariski 59 ans ke Shri Rajendra Kumar Chatur Singh Shri Rajendra Kumar Chatur Singh jinkara sab log suraj ke naam se jaisi janathalen ja unkar mrityu ho gal baat hai unkar maati aaj din ki 11 baje unkar gharve se road khompto pima se utha ke kriya karam khatir pato pima ki shmshan bhumi le jawal jaye cremation today at 11 am Pavé Road Rivière du Rempormais, Pavé Road Rivière du Rempormais, Charcori Dubariske, 82 ans que, Shrimati Fulmata Bantu, Shrimati Fulmata Bantu Paida Shinam Husun, Ordin Kara Sablog 70 ke naam se, Jesse Janathalan ja, Unkar Mrityu Hogal Bati, Unkar Mati aaj din ke 11 baje, Unkar Beta Shri Vinay Bantu ke ghare, Pavé Road, Rivière du Rempart, c'est Othake, Kriya Karam Khatir, Othrive, Rivière du Rempart, Kishmushan Bhumi Le Jawal Jai, Cremation Today at 11 a.m. Quand la boumé, Tinkori Adbariske, 68 ans ki, Shrimati Dhanwanti Gokul, Paida Shinam Ochaiba, aur jinkara sab log Narvada ke naam se Jassi Janathalan ja, unkar mrityu ho gal baate, unkar maati aaj din ke 1 baje, unkar पति श्री दनेश्वर गोकुल के घरे कौलाबू से उठा के क्रियाकर्म खातिर खैव के किशमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1 पीएम ग्रैंड बाफों लालमाटी में ग्रैंड बाफों लालमाटी में दुकोरी नौ बरिस के 49 ans के श्री चेतानन जदुननन श्री चेतानन जदुननन जिनकरा सब लोग विशाल के नाम से जस्सी जानथलन जा उनकर मृत्यु हो गल बात है उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पिताजी श्री अनिरुद्ध जदुननन के घरे ग्रैंड बाफों लाल माटी से उठा के क्रियाकर्म खातिर लाल माटी के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम Royal Road Brésivier-Diamé, Royal Road Brésivier-Diamé, Charcori Egbariske, 81 ans, Shrimati Reuti Baliram, Shrimati Reuti Baliram, Jinkara Paida Shinam Bulden, or Jinkara Sablo Kalum Enchantante, ke naam si Justi Janathalan ja, unkar mrityu ho gal baat hai unkar maati aaj dopahar ki 2 baje, unkar pati Shri
हरिलाल बलिराम के घरे रॉयल रोज ब्रिज वेज से उठा के क्रियाक्रम खते

made in Kondo Mask, Kishmushan Bhumile Jawal Jai, cremation today at 2 p.m. Petit Viager Road, Koiratime, Petit Viager Road, Koiratime, Tinkori Dubariske, 62 ans, Shri Devanand Budhu, Shri Devanand Budhu, Jinkara Sablok Bele Bele, Kedam se Jesse Janathalanja, Unkar Mrityu Hogal Bate, Unkar Mati Ajdin ke Egbaje, Ajdin ke Egbaje, Unkar Gharevese, Mane Petit Viager Road, Koirachi se Utake, Kariakaram Katir, Boamo Shokishmushan Bhumile Jawal Jai, funeral today at 1 p.m. Lotus Road, Shumegriyame, Lotus Road, Shumegriyame, Tinkori Sad Bariske, 67 ans, Shri Prem, Sisahai Shri Prem Sisahai Jinkara sab log dan peshya ke naam se jassi jana thalan ja unkar mrityu ho gal bate unkar mati aaj din ke 2 baj ke aadha aaj dupair ke 2 baj ke aadha unkar gharve se lotus road shume ghaiye se utha ke kriya karam khatir ghidya de gali kishmushan bhumi le jawal jai cremation this afternoon at 2:30 Devani Road Saint-Montin Bejikap mein Devani Road Saint-Montin Bejikap mein Charkori Tin Bariske 83 ans ke Shri Rajendra Prasad Ghura Shri Rajendra Prasad Ghura jinkara sab log gauson ke naam se jassi jana thalanja unkar mrityu ho gal bate unkar mati aaj din ke 12 baj ke aadha aaj din ke 12 baj ke aadha unkar beta Shri Shekhar गुरा के घरे देवानी रोड सैमोते बिजिकाप से उठा के क्रियाकर्म खातिर बेलूम किश्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 12:30 सेक्शन नंबर 18 बी द्वारका भारत में सेक्शन नंबर 18 बी द्वारका भारत में तीन कोरी 14 बरिस के 64 ans के श्री बाल्मिक किशन जिनका सब लोग दत्त के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज सांझ के 5 बजे भारतीय समय अनुसार उन वेंकटेश्वर हॉस्पिटल सेक्शन 18 बी द्वारका भारत से उठा के क्रियाकर्म खातिर दिल्ली भारत के दिल्ली शहर के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 5 पीएम अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम नंबर 9 चैडरेक रोड एप्सन सूरे इंग्लैंड में नंबर चैडरेक रोड एप्सन सुरेक इंग्लैंड में तीन कोरी 19 बरिस के 79 ans के श्री सोमा सुंदरम कॉपेन श्री सोमा सुंदरम कॉपेन जिनका सब लोग राजू के नाम से जैसी जाना थलन जा उनका मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आवत सुख के 8 मई के उनकर घरवे से नंबर 9 शादरेक रोड एप्सन सुरेक इंग्लैंड से उठा के क्रियाकर्म खातिर रैंडल्स पार्क क्रिमेटोरियम सूर्य किश्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन ऑन फ्राइडे 8 ऑफ मे एट 9:30 AM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम तो जितना जुन लोग शोग्रस हवन जा एमबीसी के बगल से हमने सहानुभूति प्रकट करते हैं सर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जिंदगी में बहुत से अनमोल लम्हे हुआ करते हैं, उन लम्हों को आप बहुत ही प्यार से जी लीजिएगा और जीकर इन लम्हों को औरों को भी खुशियां दीजिएगा। औरों की खुशियों में भी शामिल होइएगा, औरों की खुशियों को अपनी खुशी मानकर उन्हें और भी खुशियां प्रदान कीजिएगा। इसी मकसद से लेकर आए हैं हम आपके लिए पैगाम आपके नाम। जो भी मौका हो, जो भी इवेंट हो, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच, आप ज़रूर उनको अपने मैसेजेस भेजिएगा। मैसेजेस भेजने का ज़रिया है हमारे रेडियो मॉरिशस पर 5251705, ये है नंबर मैसेजेस वाला। और अगर आप कॉल करके मैसेज भेजना चाहते हैं तो 4028085 नंबर है हमारा, आप कॉल कीजिएगा, हम आपके मैसेजेस आपके अपनों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं। आप जो भी विश भेजना चाहते हैं बेशक नियमित हम आपके अपनों तक पहुंचा देंगे। ये विशेष अभी हमारा साथ सुबह से दे रही हैं विश्वानी दुमन जी। सभी को शुभ रविवार कह रही है, हैप्पी संडे कह रही है। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, या और लोग जो अकेले हैं, उन सब को मंगल कामनाएं, उन सब के लिए दुआएं कर रही हैं विश्वानी जी कि उनका दुख, उनका दर्द, उनका अकेलापन दूर हो जाए, और ऐसे में उनके लिए ढेर सारी दुआएं कर रही हैं। और साथ में है सुनीता जी दागुचिया से। सुनीता जी संदीप, प्रिया और श्रवण जी के साथ मिलकर हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश कर रही हैं। और इधर पांचवा बर्थडे मनाने जा रही हैं गिड़िया सी प्यारी सी मेलेडी सुमाहू, जो कनाडा में है इस वक्त और अपने सभी परिवार के लिए खुशियों का एक बहाना बन चुकी है, क्योंकि आज इनके बर्थडे पर हर परिवार का सदस्य खुश है और उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। चलिए ज़रा हम मेलोडी के पापा शिरवान की तरफ से, मामा जेसिका की तरफ से, उनके दो चाचा की तरफ से, सात कजिन्स की तरफ से, चाची की तरफ से, काथोबोन के दादा सूर्यदेव, दादी माला की तरफ से, चाचा विवेकानंद और पूरे सुमाहू परिवार की तरफ से कहते हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मेलोडी सुमाहू।

तो बेशक साथ देते रहिएगा, हम है सुरेखा, आपका साथ निभाने को है। 9 बजे तक लेकर है पैगामों का ये गुलदस्ता, पैगाम आपके नाम शो में। और चलिए जरा हम बर्थडे विश करते हैं। बर्थडे विश ये भेजा गया है सुदेवी जी द्वारा। वाकवा की सुदेवी जी का कहना है कि 29 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया की निया ने अपना 3rd जन्मदिन मनाया। गुड़िया गुड़िया शी निया को हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से। विशेष उनके मम्मा की तरफ से उनकी मम्मा वर्षा की तरफ से, पापा विमल, भैया वीर, ताया के नानी, मामू, मामी, कजिन्स लेशनव, कजिन लेशनव और रक्षित की तरफ से। और TF को मानेगा के कृषय ने अपना 9th जन्मदिन मनाया। सो स्वीट, प्यारे से कृषय को हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और कृषय को मामा अनुषा की तरफ से, पापा किरण की तरफ से, बहन केशनी की तरफ से, प्रणीता की तरफ से, नानी, मामू, विकास और पूरे राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार और कुवाहू परिवार तथा गुरन सिंह परिवार की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हम यही उम्मीद करते हैं कि निया और कृषय अपने जन्मदिन पर बहुत सारी खुशियां बटोर चुके होंगे। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ।

तो चलिए जरा हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं कुलमती जी को। गौगुप की गीता जी ने बताया कि उनकी माता जी कुलमती जी का है बर्थडे आज, और उन्हें ढेर सारी मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। कुलमती जी पिछित रहती हैं, उनके साथ उनकी सात बेटियां हैं, उनके 6 दामाद हैं और नाती नातिन सभी मिलकर मंगल कामनाएं दे रहे हैं जन्मदिन की। गौगुप की गीता जी और उनके पति अजय और उनके बेटे आनिश मिलकर माँ कुलमती जी को, नानी कुलमती जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं। उनकी सेहत अच्छी रहे, उनका हर पल बड़ी खुशी बीते, यही है दुआ हमारी टीम की। कुलमती जी आपके लिए।

खुशहाल ज़िंदगी रहे, हर किसी की हर पल मिले उनको कोई ना कोई ऐसी खुशी जिससे संतोष मिले, आपको यही हमारी उम्मीद है। और ऐसे में ये संडे भी आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे, बड़ी यादगार बन जाए ये संडे आपके लिए, हमारी यही दुआ है। हमारे साथ आशा जानू जी दे रही हैं कॉटेज से, और वो अकेली नहीं है, साथ में पूरा परिवार है। उनकी मामा कुमारी, उनके नेफ्यूज़ हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज और पूरा जानू परिवार, सभी के लिए आशाएं कर रही हैं आशा जी कि उनका संडे, आप सबों का संडे बहुत ही मंगलमय रहे। और हमारे साथ साथ हैं फ्लिक ऑन फ्लैग की अनीता जी, फ्लिक ऑन फ्लैग से अनीता जी ने भी आपको हैप्पी संडे विश किया है। और आज बर्थडे है वाकवा की शोभा जी की भतीजी पूनम दियाल जी लावांचुआ रहती है, और उन्हें शुभकामनाएं उनके पति विक्की की तरफ से, उनके दो बेटों की तरफ से, मामा वीना की तरफ से, पापा विनोद, बहन पूर्णिमा और पूरे बिसेसर और दियाल परिवार की तरफ से मंगल कामनाएं। हमारी पूरी टीम आपको बेस्ट विशेस देती है, आप खुश रहें हमेशा।

पैगाम आप अपने अपनों के नाम भेजिए। पैगाम आपके नाम है ये शो, और इस शो में हमें खुशी होती है औरों की खुशियों में शामिल होकर, हमारे सभी श्रोताओं की खुशियों में शामिल होकर, हमारे श्रोताओं के अपनों की खुशियों में शामिल होकर। बस आप मैसेजेस भेजिएगा, आप फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा कौन सी खुशी का मौका है और कौन सा मैसेज आपके मन में है। अब देखिए ना, इधर हैं सुरागिनी जी जो अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं अपने पति चंद्रदेव जी के साथ मिलकर। 41st वेडिंग एनिवर्सरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुरागिनी जी और चंद्रदेव जी, आपको शुभकामनाएँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, बेटे आशील, बहू नितुषा, बेटे गजन, बहू अर्चना, दामाद विनय और बेटी निष्ठा की तरफ से, नाती वैष्णव और नाती रूपशाली की तरफ से, और अनाया, सनाया, अमाया की तरफ से, और आरव की तरफ से, पूरा रघु फैमिली मिलकर, बनवा फैमिली और आदिन फैमिली मिलकर आपको कह रहा है अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सुरागिनी जी और चंद्रदेव जी। और शादी की सालगिरह प्रेमिला जी बता रही हैं, उनके बेटे प्रकाश और बहू स्वधा की भी है। प्रकाश और स्वधा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद माता जी प्रेमिला सी गुलाम जी की तरफ से, जो कौंदमास की रहने वाली है। उनकी 25वीं सालगिरह है, और प्रकाश और स्वधा जी को उनके पूरे सी गुलाम परिवार की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद है। उनके बेटे भविष्य की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएँ हैं, और प्रकाश और स्वधा जी हमेशा खुश रहें अपने परिवार के बीच में, और उनको बहुत सारी तरक्की मिले, उनकी माता जी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत मुबारक हो प्रकाश जी और स्वधा जी। प्रकाश जी और स्वधा जी के लिए, सुरागिनी जी और चंद्रदेव जी के लिए ये गाना बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ।

शुभकामनाएं देते हैं हम सती जी को. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सती जी. मोर ताइलुंग की सती जी कल अपना जन्मदिन मना रही हैं. 85 साल क्या जन्मदिन है ये. और बहुत ही खुशियां मिले आपको, बहुत ही अच्छी सेहत मिले आपको, खुशियों के पल परिवार के बीच में मिले आपको. यही है दुआ हमारी पूरी टीम की, पूरे ओगी परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ.

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं पद्मा जी दागुच्चा से दे रही हैं अपनी बहन सुरेखा जी को, जो मौताबा की रहने वाली है, और उनकी सखी प्रीति जी जो रामायण ग्रुप की उनकी सहेली है, और उनकी सहेली नीला जी को भी जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही हैं पद्मा जी। उनकी यही दुआ है, उनके यही विशेष हैं कि इनकी सहेलियां और इनकी बहन हमेशा तरक्की करती रहें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमेशा निरोग रहें और खुशियों के पल हमेशा पाती रहें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं।

और इधर राधिका जी का जन्मदिन है। राधिका जी रहती हैं बुसोंज और उन्हें देवयानी उनकी बहन सत्यानी और अनीता जी की तरफ से बहुत मंगल कामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू राधिका जी, आपकी बेटी वीना की तरफ से, बेटे सोगन की तरफ से, नाती शिवम, नाती नियशी की तरफ से, निशिला बानगोपाल परिवार की तरफ से, किरण, किशन, प्रीतिश, आतिश और लीना की तरफ से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और इधर शादी की सालगिरह मना रही हैं चांदनी पुरुषोत्तम जी और उनके पति प्रीतम जी। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई और इस अवसर पर चांदनी और प्रीतम जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। सपोर्ट एक दूसरे का मिलता रहे, चाहे डिस्टेंस हो, दूरी हो, ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन दिल का रिश्ता हमेशा साथ साथ रहे, दिल के करीब रहे आप हमेशा।

हमेशा और इस संसार में खुशियों के पल हर पल मिले आप लोगों को। यही हमारी पूरी टीम की दुआएं हैं चांदनी जी और प्रीतम जी के लिए।

तो बस इस गाने के साथ ही पैगाम आपके नाम कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा 9 बजे। 3 मिनट बाकी है 9 बजने में। आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार अभी से, और उसके बाद आप सुनिएगा आज का मंगल आचरण कार्यक्रम जिसे वेदिता पेश करेंगी। तो हमारी आपके अगली मुलाकात अगली बार ज़रूर होगी, और तो हम आपको हैप्पी संडे विश करते हैं। आपके पल बहुत प्यार से गुजरे यही हमारी उम्मीद है। शुभ दिन, नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 9 बजे है। चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। एक कठिन आर्थिक स्थिति में धैर्य और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता दिखाना बहुत ही जरूरी है, ये मुख्य संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के अवसर पर दिया। ये कार्यक्रम कल फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज्यादा बल दिया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में

0: नए विकल्पों को तलाशना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए देश की एकता और अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिक शिक्षा को फिर से शुरू करने का भी ऐलान किया। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिविक एजुकेशन के पुराने प्रोग्राम से प्रेरित होगा। 5 युवा मॉरिशस हज यात्रियों के लिए राहत की खबर मिल गई है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। अब ये किशोर अपनी हज यात्रा अदा कर सकेंगे। ये जानकारी कल शाम आवास तथा भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने दी, जो हज मामलों के भी जिम्मेवार हैं। सऊदी अधिकारियों ने अपनी पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया है, जिसके तहत अब यात्रा के लिए हज यात्रा के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई है। तमाहे के मुद्दे का सामना का समाधान निकालने के लिए पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। पर्सी यिप टोंग, जिन्होंने अब तक अपने व्यक्तिगत खर्च पर इस नुकसान को रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि अब अधिकारियों ने इस स्थिति की जिम्मेदारी लेने और उचित कार्रवाई करने का ऐलान किया है। कल दोपहर को मोका तेल्फे इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक 4 साल के बच्चे की अपनी ही पारिवारिक स्विमिंग पूल में गिरने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय स्विमिंग पूल में गिर गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसे बचा नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए बच्चे की मां से पूछताछ की। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के चलते ईरान को तेल निर्यात से होने वाली लगभग $5 अरब की कमाई ठप हो गई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना इस क्षेत्र में समुद्री डकैतों की तरह काम कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। कालीमाई रोड लागोजा न्यूग्रोव में, कालीमाई रोड लागोजा न्यूग्रोव में 89 साल की 89 years old की श्रीमती सावित्री सिन्हन, श्रीमती सावित्री सिन्हन पैदाशी नाम चितामन और जिन्हें सब लोग सुशील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर कालीमाई रोड लागोजा न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोदालबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM नंबर बी नौ सिटी बालीसों रुजबेल में 60 साल की 60 years old की श्रीमती दयवंती दसुरत पैदाशी नाम सुचित और जिन्हें सब लोग फिफिक के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर बी नौ सीते बालीसों रिजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीजानी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: My, this is Radio Marxist.
3: 您好.
4: Assalamualaikum.
5: Came to Mauritius.
6: Namaskar.
7: Shotarandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
8: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
9: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

सभी श्रोताओं को वेदिता की ओर से सादर नमस्ते। मंगलाचरण कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम श्रोताओं गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जयंती के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडिता ज्योति भोला रघुबीर जी। नमस्ते पंडिता जी।

आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत मंगल आचरण कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। विषय शूरवीर महाराणा प्रताप जयंती। श्रोताओं, राजपूतों की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्पवान वीर शासक एवं महान देशभक्त महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महाराणा प्रताप अपने युग के महान व्यक्ति थे। उनके गुणों के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। राजस्थान के कुंभलंगर में महाराणा प्रताप जी का जन्म महाराज उदय सिंह एवं माता जयवंती बाई के घर 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार, शास्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। महाराणा उदय सिंह के 24 पुत्र थे, पर उन सब में से महाराणा प्रताप ही ज्येष्ठ और योग्य थे। उसका दिल बचपन से ही पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में ज्यादा लगता था। वह अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ सारा सारा दिन जंगलों में जानवरों का आखेत करते बिता देता था। सादा जीवन और दयालु स्वभाव वाले महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना से अकबर भी बहुत प्रभावित हुआ था। श्रोताओं, उन दिनों भारत वर्ष पर अकबर का राज्य था। अकबर बड़ा साहसी और चतुर बादशाह था। उसने सब राजपूतों से मित्रता कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार न की। इस पर अकबर एक बड़ी भारी फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ आया। राणा उदय सिंह के मेवाड़ छोड़ने पर अकबर ने मेवाड़ पर भी अधिकार जमा लिया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात अरावली पहाड़ पर डेरा डाला और वहीं पर धीरे धीरे उदयपुर नामक एक राजधानी बनाई। चित्तौड़ के युद्ध के 4 वर्ष बाद उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह अपनी छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मरते समय उन्होंने छोटी रानी के पुत्र जगमल को ही अपना उत्तराधिकारी चुना। पर यह बात कुल रीति के अनुकूल न थी। सरदारों ने इस बात का बहुत बुरा बताया। पहले तो इसलिए कि राजपूतों में यह प्रथा है कि सबसे बड़ा पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है, और दूसरी इसलिए कि जगमल प्रताप जैसा शूरवीर, साहसी और देशभक्त न था। इसलिए सब बड़े बड़े सरदारों ने मिलकर प्रताप को ही राज तिलक देना चाहा, पर प्रताप ने राज्य लेने से इनकार किया और कहा, मैं पिताजी की अंतिम इच्छा में बाधा नहीं डाल सकता। इस पर सब सरदारों ने मिलकर प्रताप को समझाया। बहुत कहने सुनने के बाद प्रताप को ही राज तिलक दिया गया। राज तिलक पाने के बाद एक बार महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह और बड़े बड़े सरदारों के साथ शिकार खेलने गए। कुछ देर शिकार खेलने के बाद अचानक ही एक ऐसी घटना हुई कि प्रताप सिंह और शक्ति सिंह दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बात यह थी कि दोनों ने एक ही समय एक पशु पर तीर चलाया। एक तीर सनसनाता हुआ पशु के सिर को चीर कर निकल गया। प्रताप कहता था, पशु मेरे तीर से मरा है, पर शक्ति से कहता था, नहीं, मेरे तीर से। इसी तरह झगड़ते झगड़ते बात यहाँ तक बढ़ गई।

0: आई कि दोनों ने तलवारें निकालनी। सब सरदार भय से खड़े रह गए। राजवंश के पुरोहित को इस प्रकार से राजकुमारों का लड़ना ठीक न लगा। उन्होंने दोनों को बार बार समझाया पर उसकी किसी ने न सुनी। तब पुरोहित ने यह सोचकर कि इस लड़ाई का अंत करने के लिए किसी के खून की जरूरत है, अपनी छाती पर कतार चला ली। इधर जब प्रताप ने यह देखा कि उनके झगड़े को मिटाने के लिए पुरोहित ने अपनी हत्या कर ली है, तो उन्होंने शक्ति सिंह को उसी समय देश से बाहर निकाल दिया। श्रोताओं, सकते हैं सिंह अकबर के शरण में चला गया और मुगलों से मिल गया। जब राणा प्रताप को राज सिंहासन मिला तब उसने अपने आप को बड़े संकट में पाया। अकबर तो उसका सबसे बड़ा शत्रु था ही, पर साथ ही अजमेर, बूंदी, जयपुर आदि के राजपूत राजा भी प्रताप के दुश्मन बन बैठे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रताप भी उनकी तरह अकबर से मित्रता कर ले। इधर प्रताप पर एक और बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। प्रताप का सारा खजाना चित्तौड़ के किले में था और उस पर अब मुगलों का अधिकार था। महाराणा प्रताप के 30,000 राजपूत साथी भी अकबर के साथ युद्ध में काम आ चुके थे और उनके दो सगे भाई सकते सिंह और जगमल भी मुगलों से मिल चुके थे। प्रताप बड़ा साहसी पुरुष था। उन्होंने इस बात की जरा भी चिंता न की। उसे कभी यह ख्याल भी न आता था कि उसके पास केवल थोड़े से सैनिक हैं और उसके शत्रु अकबर के पास लाखों सैनिक हैं। महाराणा प्रताप हर समय अपनी जन्मभूमि मेवाड़ को फिर से आज़ाद कराने की धुन में लगे हुए थे। वे जब देखते थे कि विधर्मियों पवित्र चित्तौड़ को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तो वह ठंडी सांसें भरकर रह जाते थे। अंत में उसने एक दिन दरबार को खूब सजवाया और सब बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर कहा, मेरे वीर राजपूतों, आज हम देखते हैं कि हमारी पुण्य जन्मभूमि मेवाड़ पर यौवनों का राज्य है। यह वही मेवाड़ है जिसे इन विद्रोहियों से बचाने के लिए हमारे पूर्वज हंसते हंसते जान पर खेल जाते थे। हमारी स्त्रियां हंसते हंसते आग में जलकर प्राण न्योछावर कर देती थी। तो क्या आज हम में इतना साहस भी नहीं कि हम इसे फिर से आज़ाद करा सकें? आज मैं सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक चित्तौड़ के किले पर राजपूतों का झंडा न फहरा दूँ, तब तक मैं चैन की सांस न लूँगा। मैं चित्तौड़ को जीते बिना सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने की जगह पत्तलों में भोजन करूँगा। मखमली बिस्तरें पर सोने के बदले जमीन पर सोऊंगा। महलों की जगह झोपड़ों में रहूंगा। क्या आप मेरे प्रण को पूरा करने में सहायता देंगे? सब सरदारों ने बड़े जोश से कहा, हम सब में जब तक खून की एक एक बूंद भी रहेगी, तब तक हम चित्तौड़ के लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते वहीं पर मर जाएंगे। यह सुनकर राणा प्रताप बहुत प्रसन्न हुई और उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। महाराणा प्रताप इस प्रतिज्ञा पर आयु भर डटे रहे और राजपूतों ने भी उनका साथ दिया। श्रोताओं, वीरता और साहस का पर्याय राजपूताना का यह रत्न हम सभी को जीने की कला सिखा गया, स्वतंत्रता का महत्व समझा गया, बता गया कि गुलामी की मलाई से घास की रोटी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन गिने चुने राजाओं में से थे जिन्हें मुफलिसी मंजूर थी मगर गुलामी नहीं। भारत माँ का यह लाल अपने आदर्शों और स्वतंत्रता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था। महाराणा प्रताप का त्याग, प्रजा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, एक उज्ज्वल चरित्र का व्यक्तित्व, देशभक्ति जिनकी नसों में लहू के रूप में दौड़ती थी, जो असत्य व अन्याय से समझौता किए बिना अनवरत सत्य के लिए प्रत्येक परिस्थितियों में बलिदानी थे, जो ऊंच कोटि के संस्कार व स्वाभिमान से गढ़े गए व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनका रण कौशल अद्वितीय था, वो युगों युगों तक जनमानस के हृदय में बसे रहेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। इत्योम शांते शांते शांते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडिता ज्योति भोला रघुबीर जी।
0: आपको भी विदिता जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

0: प्रिय श्रोताओं, इस भजन के साथ चलिए अब हम अपने कार्यक्रम मंगलाचरण को आगे ले चलते हैं। जैसा हमने बताया आपको कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से, और अब मिलते हैं हम पंडिता सुनीति मुगोल जी से। और मेरा आपसे सवाल है, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया? पंडिता जी आपको नमस्ते।
1: नमस्ते वेदिता जी, चलिए आपका प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं, पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगोल का सादर सप्रेम नमस्ते, और इस मंगल आचरण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय महाराणा प्रताप का क्षत्रिय धर्म। श्रोताओं, धर्म के आधार पर क्षत्रिय धर्म का अर्थ समाज, राष्ट्र, धर्म और न्याय की रक्षा करना है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है सुरक्षा प्रदान करने वाला। यह वर्ण व्यवस्था में समाज का रक्षक और शासक वर्ग है, जिसका परम कर्तव्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। वेदों के अनुसार क्षत्रिय धर्म की परिभाषा और मुख्य कर्तव्य सबसे प्राथमिक धर्म, प्रजा, समाज और राष्ट्र की रक्षा करना ही है। राज्य के भीतर कानून और न्याय धर्म की व्यवस्था बनाए रखना, जिसे प्रजापालन कहा गया है, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य माना गया है। युद्ध में पीठ न दिखाना और निडरता से शत्रुओं का दमन करना क्षत्रिय धर्म का सार है। एक आदर्श क्षत्रिय को शस्त्र हथियार के साथ साथ शास्त्र ज्ञान नीति का भी ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वह अधर्म को रोकने के लिए सही निर्णय ले सके। क्षत्रिय में शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। संक्षेप में वैदिक धर्म में क्षत्रिय धर्म का अर्थ मानव कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की तत्परता। श्रोताओ, ठीक इसी प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन अत्यंत वीरता, त्याग और दृढ़ संकल्प के साथ किया। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत कुल के क्षत्रिय थे और मातृभूमि की रक्षा मेवाड़ और सिसोदिया वंश की स्वतंत्रता की रक्षा की, न कि मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण किया। सिसोदिया गुहिल वंश की उपशाखा है, जिसका राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। चित्तौड़ के गुहिल वंश के राजा के पुत्र थे। सिसोदिया ग्राम में आकर बसे, जिससे उनके वंशज सिसोदिया कहलाए। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में अपनी वीरता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। उनका कथन, हल्दी घाटी के युद्ध ने मेरा सर्वस्व छीन लिया, पर बदले में मेरे गौरव और कीर्ति को चारों ओर फैला दिया और सामान्य जन को भी मातृभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। श्रोताओ, महाराणा प्रताप के विचार, साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाते हैं। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष ही सफलता है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर जीवन भर संघर्ष और कठिनाइयों का रास्ता चुना। एक सच्चे

राजा की भांति उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए संघर्ष किया और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मेवाड़ को बचाने का संकल्प पूरा किया। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाई, लेकिन क्षत्रिय कुल की मर्यादा और मातृभूमि की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उनके इन उच्च नैतिक मूल्यों के कारण महाराणा प्रताप एक आदर्श योद्धा और शासक के रूप में याद किया जाता है। Better to live one day like a lion than 100 years like a sheep। श्रोताओ, मातृभूमि की अपनी माता से तुलना करना या अपनी माता की मातृभूमि से तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है। मातृभूमि व माता दोनों अतुलनीय हैं, दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। अतः दोनों की रक्षा हेतु प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सुख से जीवन जीने से अच्छा है राष्ट्र के लिए कष्ट सहना और राष्ट्र के लिए जीना, जो अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी झुक कर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीत जाते हैं। इन कथनों में मेवाड़ के स्वाभिमान और मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप के संघर्ष की झलक मिलती है। श्रोताओ, कष्ट विपत्ति और संकट से जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरे नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए, क्योंकि ये संसार कर्म वीरों की ही सुनता है। अतः अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रशस्त रहें। जो न झुके वो तलवार है, जो राज करे वही दरबार है। समझाना मत हमें, बिखरे हुए सारा राजपुताना एक परिवार है, महाराणा प्रताप का कथन। छुटाओ, जिसने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए व्रत लेकर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया हो, उसे ही क्षत्रिय कहा जाता है, उसे ही महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया कहा जाता है। नतमस्तक हैं हम। जय महाराणा प्रताप। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति।

0: कार्यक्रम मंगलाचरण जिसे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। और जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती की बारे में। और अब हमारे बीच हैं आचार्य बितुरा जी। नमस्ते आचार्य जी।
1: नमस्ते जी।
0: और आज का हमारा जो विषय है उस पर भी आप बात करेंगे। वैसे आपने कहा था कि आप आज जो वर्तमान युवा पीढ़ी हैं इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे।
1: जी, जो विषय हैं आगे बढ़ा रहे हैं, महाराणा प्रताप और वर्तमान युवा। वर्तमान युवा की परिस्थिति को देखते हुए हम जैसे प्रचारकों का एक उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि हम इस भोले युवाओं को हम कुछ ऐसे शिक्षा दें जिससे इसका जीवन और समाज दोनों में शांतिमय वातावरण बना रहे। हम एक श्लोक से इस विषय को हम आगे ले जा रहे हैं।
0: जी।
1: यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरादूरतो यावचेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता या

संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमा कीदृश। यह श्लोक भर्तृहरि कृत वैराग्य शतकम से लिया गया है। इसका भावार्थ, इसका अर्थ इस प्रकार से है, जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित हैं, जब तक बुढ़ापा दूर हैं, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्मकल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करें। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे मृत्यु काल में कुछ भी नहीं हो सकेगा। प्रिय युवाओं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को उस खेल के भांति ले जाइए कि अगर आप छलांग लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे जाना पहले। जितना पीछे जाओगे उतना आप सफलता से आगे बढ़ पाओगे, अर्थात इतिहास को आपको जानना होगा। हम विचार को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। परमात्मा ने मानव सृष्टि का शुभारंभ युवाओं से किया था। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, स्वयं परमात्मा का विश्वास युवाओं पर था। उन्होंने इसे अब संसार बनाया कि संसार को चलाने के लिए उन्होंने युवाओं को सामने रखा, अर्थात युवा पीढ़ी से ही मानव सृष्टि का शुभारंभ किया। सनातन वैदिक धर्म में गृहस्थी समाज को चलाता है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। इन तीन आश्रमों में विशेषकर गृहस्थी पर संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि वे समाज को चलाएं। और इतिहास साक्षी हैं, हमने कथाओं के माध्यम से सुना, पढ़ा। इस प्रकार से शिव जी सतयुग में, श्री राम जी त्रेता युग में और श्री कृष्ण जी द्वापर युग में गृहस्थी रहे। और कलयुग में महाराणा प्रताप जी भी गृहस्थी रहे, गृहस्थ में रहे। यहाँ ध्यान यह भी देने वाली बात है, चारों अपने समय के राजा थे। गृहस्थी समाज को चलाता है, पूर्व में ने कहा, परंतु यह भी देखा गया तीनों युगों में शिव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने सनातन वैदिक धर्म समाज को अपने परिवारों की समस्या ही प्रस्तुत किया है, अर्थात उनके जो पारिवारिक समस्याएं थी वे भी हम आज तक हम उसी को पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं।

परंतु कलयुग में एक ऐसा राजा हुआ, वो एक गृहस्थी, अर्थात महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, एक गृहस्थी हुए और उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर प्रहार किया। सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में राजाओं ने अपने समस्याओं को सामने रखा और कलयुग के राजा महाराणा प्रताप वो समस्याओं पर प्रहार किया। मेरे युवा साथियों, महाराणा प्रताप जी का जीवन काल मात्र 57 वर्षों का रहा और उन्होंने माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या इस वेद मंत्र का आदेश का पालन किया, अर्थात जन्म भूमि माँ का पुत्र और पृथ्वी का वीर बेटा बनकर दिखाया। वर्तमान में जितने हाथ जोड़कर ओम बोलने वाले हैं वे सब महाराणा प्रताप जी के ऋणी हैं। मेरे युवा शक्ति ध्यान रहें, जवानी जाकर फिर नहीं आती, जवानी जाकर फिर नहीं आती और बुढ़ापा आकर कभी नहीं जाता। अभी जवान हो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आप अब स्वयं अपने आप पर गर्व करेंगे और उसके लिए इतिहास आपके साथ है, विशेषकर महाराणा प्रताप जी के जीवन। युवाओं, दो शब्द हैं, विनाश और विकास। विनाश और विकास दोनों आपके हाथों में, आपके साथ में हैं। अगर आप आज कुछ अनुचित काम कर रहे हैं और अपने माता व पिता से झूठ बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फिर याद रखना, एक दिन आपको अपने बच्चों से सच बोलना होगा। अर्थात जो है एक सच्चाई है, एक सच्चाई है, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ परंतु एक सच्चाई है, ऐसा देखा गया है हमारे समाज में। जनवरी महीने में विवाह हुआ और मार्च में जो है बच्चा जन्म लिया। अभी आपने अपने माता पिता से इससे उनसे सबसे झूठ बोल दिए, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा तब बच्चा आपसे प्रश्न करेगा कि माताजी पिताजी, आप लोगों का विवाह तो जनवरी में हुआ, मैं मार्च में कैसे जन्म ले लिया? फिर आप अपने बच्चे के सामने झुक जाओगे। ऐसा कदम मत उठाना इस जवानी में जिससे कि आपको जाकर गृहस्थ आश्रम में, जहाँ पर आपके कंधे पर उत्तरदायित्व समाज को चलाने को, आप स्वयं अपने बच्चों को उत्तर नहीं दे पाओगे। युवाओं, अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि आज अपने माता पिता और कल अपने बच्चों से सच ही बोल सकोगे। ऐसे सफल जीवन के लिए महाराणा प्रताप जी को आदर्श बनाओ। आप न्यू जेनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिदिन सोने से पहले गूगल सर्च से महाराणा प्रताप के जीवन को पढ़ो और अपने सनातन वैदिक धर्म के लिए जियो, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करो। एक उदाहरण है एक सेठ और एक नौकर। सेठ जब भी थक के आता था तो अपने नौकर से कहता था, मुझे कुछ सुनाओ, और नौकर कुछ सुनाता था और सेठ जो है वाह वाह करता था, बहुत बढ़िया, और उसको आराम मिलता था। एक दिन एक सेठ ने एक सुंदर से वस्तु दिया, उस अपने नौकर को कहा कि एक दिन ऐसा देखना आपके जीवन में कोई मूर्ख व्यक्ति मिलेगा और ये जो है वस्तु उसको दे देना। फिर नौकर ने पूछा सेठ से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सेठ ने कहा, ऐसा है, जब मैं थक करके आता हूँ, मुझे पता है तुम मुझे ठग रहे हो, इधर की उधर बात सुना रहे हो, पर मैं थका हुआ आता हूँ, आपको सुन करके मुझे कुछ आराम मिल जाता है, इससे मैं बोल रहा हूँ कि जो सुना रहे हो ना, किसी मूर्ख को सुना देना तो उसको दे देना। फिर नौकर ने पूछा, तो आप जितने कुछ ये थकते हैं, जितने कुछ आप कुछ करते हैं, ये जो है आप किस के लिए कर रहे हैं? तो सेठ ने कहा, रहने के लिए, ये मेरा इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे यहाँ, सब कुछ है। तो नौकर ने कहा, जब आपको पता है एक दिन आपको छोड़ना है? बोले, हाँ मुझे पता है ये छोड़ना है एक दिन, ये सब मुझे छोड़ना है एक दिन।

0: फिर कहाँ जाना है? मुझे जाना है कहाँ? परमात्मा के शरण में, किस शरण में जाना है? अर्थात हम तो आत्मा, हम तो परमात्मा से मिलन करेंगे। तो कहा कि जब वहाँ से आपको लौटना है सेठ जी? सेठ जी का कि नहीं। तब नौकर थोड़ा चौंक गया, पूछते हैं कि यहाँ आपको नहीं रहना है, पूरे जो है यहाँ पर नहीं रहना है आपको, यहाँ आपको पता है पल भर रहना है, पता नहीं क्या हो जाए, और जहाँ आपको रहना है वहाँ के आप कुछ किया नहीं, यहाँ के आप ये सब कुछ कर रखे हैं यहाँ पर। तो अब सेठ जो है सुनने लग जाता है, तब
1: सोचने लग गए
0: सोचने लग जाता है। अब नौकर क्या करता है, उसी वस्तु जो है लेकर के वो दे देता है सेठ जी को। सेठ जी कहा मुझे क्यों दे रहे हो? बोले आप मूर्ख नहीं, आप तो महामूर्ख हैं। अपने महामूर्ख हैं कि आपको मैं ये दे रहा हूँ, क्योंकि आपसे महामूर्ख कोई है नहीं। जहाँ आपको रहना है वहाँ आपने कुछ किया नहीं, वहाँ के लिए कुछ किया नहीं, जहाँ नहीं रहना है वहाँ के लिए आप सब कुछ कर रखे हैं, कर रखे हैं। आप बोल रहे हैं आपके पास इतने कपड़े हैं, प्रतिदिन एक कपड़े बदलते हैं, एक एक कपड़े बदलते हैं, एक दिन के लिए एक कपड़े बदलते हैं। ध्यान रखना सेठ जी, यानी आप जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के, आप जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के, एक दिन आएगा आप भूले जाएंगे कांधे बदल बदल के।
1: ये तो बहुत बड़ी बात,
0: कांधे बदल के। इसलिए आत्मा श्रेयसी ताव देव विदुषा, अर्थात मेरे युवा साथियों आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन के भाग उन्होंने कर दिया, सब कुछ हमको दे दिया आगे चलाने के लिए। हम जो है आपसे यही आशा रखते हैं वे युवाओं कि आप लोग कुछ करो, और क्या करना है, ब्रह्मचर्य पालन से नई पीढ़ी का निर्माण करो।
1: बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो,
0: यही हमारी शक्ति है,
1: हमारी युवा पीढ़ी जो हमें सुन रहे हैं वो आपकी बातों पे अवश्य ध्यान देंगे।
0: मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप जाइए मेरे युवा साथियों, आपके गांव में, आपके जान पहचान में किसान से आप मिलेंगे, वो किसान से पूछना कि किसान भैया, किसान चाचा, जब आपके यहाँ बढ़िया बीज होता है, टमाटर जो भी सब्जी के बढ़िया बीज, तो कहाँ बोते हैं आप? तो वो बोले कि यार वो अपने खेत में बोता है वो। तो ये बड़ी शिक्षा है युवा साथियों, जो आने वाली पीढ़ी है वो बीज जो है आप स्वयं अपने, उसका सही समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, उस किसान से शिक्षा लें, बढ़िया बीज अपने खेत में बो। और हमें आपसे यही आशा है पूर्ण विश्वास के साथ कि महाराणा प्रताप के परिश्रम को आप युवा शक्ति ऐसे नहीं जाने देंगे, आप हमें नई पीढ़ी का निर्माण करके देंगे, जिससे हम 2050 में दिखेंगे, हमारे ओम का ध्वज ऊपर रहेगा, और हम तब बोलेंगे सच में किसान ने जवान को बढ़िया शिक्षा दिया, आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य बितुला जी। प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब आइए हम मिलते हैं पंडिता सुनीता बंदन श्याम जी से। पंडिता जी नमस्ते।
2: नमस्ते वेदिता जी।
1: तो पंडिता जी, आज जहां हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम लेकर आए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे महावीर प्रतापी महापुरुष महाराणा प्रताप की मृत्यु कब और कैसे हुई?
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा वेदिता जी। चलिए इस बारे में हम अधिक चर्चा न करते हुए उनकी मृत्यु के बारे में ज़्यादा बोले
1: जी।
2: तो जानते हैं, अकबर अन्य हिंदू राज्य की तरह मेवाड़ को भी जीतना चाहता था
1: जी,
2: परंतु महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अकबर के खिलाफ युद्ध की बिगुल बजाता रहा। उन्होंने ना सिर्फ अकबर के घमंड को चकनाचूर किया, बल्कि मेवाड़ सहित अन्य राजपूतों को भी अकबर के चुंगल से छुड़ाया था। वह वर्ष था 1596, जब मुगलों ने महाराणा के भय से मेवाड़ पर हमले करने बंद कर दिए। ऐसे में निश्चिंत होकर एक दिन महाराणा प्रताप अपने सभी पुत्रों के साथ जंगलों में शिकार पर निकले। महाराणा ने सामने आ रहे एक शेर के मस्तक पर अपना निशाना जमाया। महाराणा ने धनुष के प्रत्यंचा को इतने जोर से खींचा कि उनके पेट पर तनाव उत्पन्न हुआ। यह तनाव एक घाव बन गया, जो वक्त के साथ अधिक

0: गंभीर हो गया और अंततः हिंदुआ सूर्य की मृत्यु का कारण बना। ईश्वर की माया भी अपार है। जिस राणा को बड़ी बड़ी गहराई न रोक सकी, विकट युद्धों में जिसने अपनी विजय की नगाड़े बजाए, वो राणा अब वैकुंठ में प्रस्थान करने वाले थे। दिल्ली का सुल्तान भी जिसके समक्ष आने से घबराता था, वो राणा प्रताप सिंह इस दुनिया से विदा हो रहे थे। आज वो सिंह सिर्फ कमान की प्रत्यंचा खींचने से घायल हो गए। 19 जनवरी सन 1597 का सूर्योदय अन्य दिनों की भांति अलग था। पूरे मेवाड़ में भयानक सन्नाटा पसर गया था। मेवाड़ के समस्त ठाकुरों, सामंतों और दूर देश का हिंद के अमर सपूत का अंतिम दर्शन करने चावंत पहुँचे। जनता बिलख रही थी। क्यों? क्योंकि यह वह दिन था जिस दिन मेवाड़ के सबसे बड़े बेटे को भगवान का बुलावा आया था। परंतु महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में बड़ी गहरी चिंता में मग्न हो गए थे। उनको पूरा यकीन था कि उनके जाने के बाद मुगल मेवाड़ को छोड़ेंगे नहीं। क्या अमर सिंह मेवाड़ के मंदिरों और दुर्गों को की रक्षा कर पाएंगे? इन्हीं चिंताओं में मग्न महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के ठाकुरों से कहा, जब तक एक भी राजपूत जीवित रहे तब तक मेरी मातृभूमि तुर्कों की हाथों में न जाने पाए, न कभी चित्तौर की चोटी से केसरिया ध्वज उतारा जाए और ना ही कोई सूर्यवंशी विधर्मियों की सभा में शामिल हो। तभी सरदारों ने महाराणा से कहा, महाराज, हमारी प्रतिज्ञा है जब तक हम में से कोई एक भी सपूत जीवित रहेगा तब तक हम मेवाड़ के हर दुर्ग पर केसरिया नहीं लहरा देंगे। उस दिन तक दिल्ली की सत्ता से संघर्ष जारी रखेंगे। अपने सरदारों के इन वचनों को सुनते ही हमारे वीर महाराणा प्रताप जी ने इस नश्वर देह को त्याग दिया। वह 19 जनवरी सन 1597 का दिन था। चावंत से 2 मील दूर बाडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। आज वहां महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बनाया गया है, जो आज भी वीरों की तीर्थ भूमि के नाम में सम्मानित है। इस प्रकार एक ऐसे राजपूत का जीवन का अवसान हो गया जिनकी वीर गाथा आज भी प्रत्येक हिंदू को प्रेरित करती है। इस संसार में जितने दिनों तक वीरता का आदर रहेगा, उतने ही दिनों तक महाराणा प्रताप सिंह का नाम इस धरती पर उगते हुए सूर्य की भांति चमकता रहेगा।
1: हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पंडिता सुनीता बंदन श्याम जी, और आपने बहुत चीज़ें हमें बताई आज हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो प्रिय श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम आज यहाँ पे समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत किया गया, और हम सभी हमारे जो पंडित आए हैं, जो पंडित आचार्य जी आए थे, उन सबको धन्यवाद देते हैं। हमारी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कार्यक्रम के साथ प्रिय श्रोताओं हम फिर उपस्थित होंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ दिन और नमस्ते।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर अभी से। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। 5 मॉरिशन युवा हज यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। अब ये किशोर अपनी हज यात्रा अदा कर सकेंगे। ये जानकारी कल शाम आवास तथा भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने दी, जो हज मामलों के भी जिम्मेवार हैं। सऊदी अधिकारियों ने अपनी पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया है, जिसके तहत अब हज यात्रा के लिए न्यूनतम आयु 12 साल तय कर दी गई है। तमाग के मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कल सुबह खुद उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां समुद्र के इरोजन के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति और 100 साल पुराने पेड़ों पर मंडराते खतरे का जायजा लिया। पर्सी यिपटोंग, जिन्होंने अब तक अपने व्यक्तिगत खर्च पर इस नुकसान को रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि अब अधिकारियों ने इस स्थिति की जिम्मेदारी लेने और उचित कार्रवाई करने का ऐलान किया। मॉरिशस अब अपने पर्यटन क्षेत्र से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अपने समुद्र तटों और लगूनों के अलावा देश अब अपनी ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने और इस क्षेत्र को एक मजबूत ढांचा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी दिशा में 4-6 मई तक मॉरिशस में ओशन असाइजेज का आयोजन किया जा रहा है, जो मॉरिशस ओशन वीक का एक मुख्य हिस्सा है। इन 3 दिनों में समुद्री शासन और संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए रणनीतिक सलाह मशवरा किया जाएगा। ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सरकार, निजी सेक्टर, एनजीओस तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हुई थी। साल 2026 की शुरुआत में तकनीकी विशेषज्ञों ने मिलकर सुझावों को और बेहतर बनाया। 10 अप्रैल को एक राष्ट्रीय सारांश रिपोर्ट जारी की गई, जो भविष्य की ब्लू इकोनॉमी 2.0 के रोड मैप का आधार बनेगी। कल दोपहर मोका के तेलफे इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 4 साल के बच्चे की अपनी ही पारिवारिक स्विमिंग पूल में गिरने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय स्विमिंग पूल में गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए बच्चे की माँ से पूछताछ की। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान युद्ध को शुरू हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और दुनिया का सबसे अहम रणनीतिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी तब से ही प्रभावित है। इस मार्ग से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। सामान्य परिस्थितियों में रोजाना लगभग 140 जहाज इस रास्ते से 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद लेकर गुजरते हैं। ये भी नहीं, वैश्विक जरूरत का लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से सप्लाई होती है। 1/3 यानी कि 33% हीलियम और यूरिया जैसी अहम वस्तुओं की आपूर्ति यहां से होती है। युद्ध विराम के दौरान भी हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं और ईरान के साथ साथ अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी के चलते इस मार्ग से एक भी जहाज नहीं गुजर पा रहा है। तो ये थी तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। हाउसिंग स्टेट पेरो के लेन बेलों में अठहत्तर साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती इटू पैदाइशी नाम दौलतरिया, और जिन्हें सब लोग सुंदरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय इटू के घर हाउसिंग स्टेट पेरोके लेन बेलोम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंटें बेजुकाप की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM टेंपल रोड रिवेज रॉम्पोर में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री किशोर कुमार सोहन, जिन्हें सब लोग अशोक के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर टेम्पल रोड रिवेजरों पर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

मुकद्दस महीना जिसमें खुशनसीब हुज्जाज कराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ बैतुल्ला की हाज़िरी के लिए सफ़र इश्क पर रवाना होते हैं। सामईन, आज भी हसब मामूल आप अपने पैगामात और अपनी फरमाइशें, अपनी दुआएं हमें इस नंबर पर ज़रूर भेज सकते हैं, 5251-7005, हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज का हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए इस नूरानी बज़्म का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तिलावत कलाम पाक से दिलो जान से समात फरमाइए।

सदकल्लाहु अलियुल अज़ीम। सामईन कराम, अभी आपने कलाम पाक की तिलावत समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से आज मॉरिशस से हुज्जाज कराम का पहला काफिला सफर हज के लिए रवाना हो रहा है। आज शाम तकरीबन 5 बजे 330 खुशनसीब इस अजीम सादत के लिए परवाज करेंगे। यकीनन उनके दिल की धड़कनें भी हरमैन शरफ़ैन की मोहब्बत में तेज़ हो रही होगी। हम इन तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया भर के हुज्जाज कराम के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी हर इबादत को कबूलियत का दर्जा अता करे और उन्हें खैर व आफियत के साथ वापस लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम उनसे बस यही कहेंगे कि काबे पे परी पहली नज़र तुमको मुबारक।

सामईन कराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए आज शाम का वो मंज़र जब हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत छाई हुई होगी। हर तरफ सफ़ेद एहराम में मलबूस हुज्जाज कराम, यूँ महसूस होगा जैसे ज़मीन पर नूर उतर आया हो। कोई माँ अपने बेटे को गले लगा रही होगी, कोई बेटी अपने वालिद के हाथ छूम रही होगी, कहीं दोस्त एक दूसरे से लिपट कर अश्क बहा रहे होंगे। हर आंख में नमी, हर दिल में एक अनोखा जज्बा मौजज़ी होगा। एयरपोर्ट का हर गोशा गोया इबादत में डूबा हुआ होगा, कोई तस्बीह पढ़ रहा होगा, कोई खामोशी से आंसू बहाएगा, तो कोई अपने प्यारों को आखिरी बार देखकर दिल को तसल्ली देगा। सामईन, आइए चंद पैगामात आपको सुना देते हैं। सबसे पहला पैगाम हमें दागुचिया से मौसूल हुआ है। मोहतरमा आमिरा अब्दुल हमें लिखती हैं कि इमसाल खुशकिस्मती से उनके जो वालिदैन हैं इम्तियाज़ और यास्मीन, वो हज के लिए जा रहे हैं। तो अपने वालिदैन के लिए यास्मीन ये दुआ पेश करती हैं, ये पैगाम पेश करती हैं कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन की जो दुआएं हैं वो कबूल फरमाए और उनके वालिदैन की जो भी नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरा पैगाम बंधु और कौमाली फैमिली की तरफ से उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं। क्यूपिप से फरराज जुमन हमें लिखती हैं कि जो हज के लिए इमसाल जा रहे हैं अल्लाह ताला उनके हज को आसान फरमाए और सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज वो सआदत हैं जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में मचलती रहती हैं। हज का सफ़र सिर्फ मीलों का फासला तय करने का नाम नहीं, बल्कि ये तो दिल से दिल तक का सफ़र है। ये इश्क इलाही की एक जीती जागती दास्तान है। ये वो मुबारक सफ़र है जब बंदा दुनिया की तमाम रंगीनियों को पीछे छोड़कर सिर्फ रज़ाए इलाही की तलब के लिए निकल पड़ता है। हज का काफिला जब रवाना होता है तो सिर्फ मुसाफिर नहीं होंगे, बल्कि दुआओं, उम्मीदों और मोहब्बतों का एक नूराने सिलसिला साथ होगा। आइए सामईन, पैगामात का सिलसिला भी जारी रखते हैं। मोताई ओगी से मोहतरमा शिरीन हमें लिखती हैं कि सबको हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, हुज्जाज कराम को मुबारक हो, ख़ासकर जनाब शमशाद को जो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं। सादाली वकवा से हमें मोहतरमा निसों कुदाबकस लिखती हैं कि वो अपने शौहर जनाब मामद कुदाबकस के साथ हज के लिए जा चुकी हैं, और सबसे पहले तो वो तमाम हुज्जाज कराम को दिली मुबारकबाद पेश करती हैं। फ़िलहाल उनके जो शौहर हैं जनाब मामद कुदाबकस, वो काफ़ी अलील हैं, काफ़ी उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके शौहर को शिफाए कामिला अता फरमाए। और आखिर में उन्होंने वो उन तमाम लोगों को दुआ पेश करती हैं जो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं। और अगला पैगाम प्लेंदी पापाई से हमें मौसूल हुआ है। मोहतरमा महनाज हमें लिखती हैं कि वो अपने भांजे जनाब जमील बजू के लिए दुआए शिफा पेश करती हैं। अल्लाह ताला बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

तर के साथ उर्दू प्रोग्राम बज़्म-ए-अक़ीदत समाप्त कर रहे हैं। आइए पैगामात की ओर बढ़ते हैं। अगला पैगाम हमें न्यू ग्रोव से मौसूल हुआ है। मोहतरमा फ़ातिमा हमें लिखती हैं कि उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। इंशाल्लाह ये कलाम हमारे पास दस्तयाब है, इंशाल्लाह पैगामात के आखिर में हम आपको ये कलाम सुनाएंगे। अगला पैगाम हमें वालिद प्रित से मौसूल हुआ है। मोहतरमा सकीना हमें लिखती हैं कि उनके फूफा समा केबान और फूफी जाहिदा केबान 12 मई को हज के लिए जा रहे हैं। तो वसीम, ताहिर, समीरा, ऐमान, मुराबकस और केबान फैमिली की तरफ से इन हुज्जाज कराम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। और अगला पैगाम हमें वाकवा से मौसूल हुआ है। मोहतरमा शहनाज हमें लिखती हैं कि मैं हाजियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, दिल से दुआ है कि उनका ये सफ़र आसान हो और अल्लाह उनकी हाज़री कबूल फरमाए। इल्तिजा है दुआ में हम सब को भी याद करें। बिल्कुल, हम सब भी दुआ के तलबगार हैं और गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।

सामईन कराम, मदीना मुनव्वरा वो मुबारक शहर हैं जहां दिल की मुरादें पूरी होती हैं। वाकई मदीने का बुलावा मिल जाना ही इस बात की अलामत है कि बंदे की किस्मत खुल गई, अब मुरादें पूरी होने की, मुश्किलात टलने की और परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है। कोई भी दुश्वारी आ जाए, बस या रसूल अल्लाह पुकारने की देर होती है। सामईन कराम, अगला पैगाम हमें महनाज ने भेजा है। उन्होंने एक बहन के लिए दुआ की दरख्वास्त की है जो इमसाल, बल्कि वो एक बहन को मुबारकबाद पेश करती हैं जो इमसाल हज के लिए जा रही हैं, परवीन, जो पीतों की रहने वाली है। हम परवीन को मुबारकबाद पेश करते हैं जो इमसाल हज के लिए जा रही हैं। अगला पैगाम पिचपाके से हमें मौसूल हुआ है। मोहतरमा शिरीन दस्त मोहम्मद ने सुल्ताना बी दस्त मोहम्मद के लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त की है, जिनको इंतकाल हुए 8 दिन गुज़र चुके हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।

सामईन कराम, हज सिर्फ सफ़रे काबा नहीं बल्कि सफ़रे मारिफत है। एक ऐसा सफ़र जो दिल को बदल देता है और बंदगी को इबादत बना देता है। सरवरे कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज किया करो, क्योंकि हज गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है। सामईन, आइए आज के आखिरी पैगामात समाप्त करते हैं। बोबासे से मोहतरमा गाजिया निपुल अपने शौहर मरहूम रशीद निपुल के हक में दुआए इसाले सवा पेश करती हैं। अली यूसुफ साफिया और जिलानी की तरफ से ढेर सारी दुआएं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अगला पैगाम गिवे जुगोंपा से हमें मौसूल हुआ है। मोहतरमा जैदा हमें लिखती हैं कि तमाम हुज्जाज कराम को बहुत बहुत मुबारक हो जो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं।

कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, गो हाजरी बार बार हो हसरत नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी कलाम के साथ हमारा आज का बज़्म अकीदत प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आपके पैगामात की खुशबू और फरमाइशों की मिठास ने इस महफिल को और भी दिलनशी बना दिया है। आपकी जानिब से आने वाला हर पैगाम, हर दुआ हमारे लिए बेहद कीमती हैं। इनके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और जाते जाते आज शाम जो हुज्जाज कराम हज के लिए जा रहे हैं, एक बार फिर उन तमाम खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है। दिले नादा को ये जुदाई गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। पर वादा है कि आइंदा हफ्ते फिर यह सिलसिला जुड़ेगा और हम आपसे दोबारा हम कलाम होंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस से वाले पड़े सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

0: Number four.
1: ஆல்பம் நோவால வரும் அடுத்து வரும் பாடல்.

Shut up.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का एक पैर यूरोपा लीग के फाइनल में एस्टन विला पर 1-0 की जीत। नैरो लीड ही सही पर कीमती है। सेकंड हाफ में क्रिस वुड का गोल पेनाल्टी पर काफी रहा। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट एस्टन विला का मैनेजर उनई एमरी वा से बहुत नाराज हुआ। उसके अनुसार नॉटिंघम फॉरेस्ट के मिडफील्डर एलियट एंडरसन को रेड कार्ड देना चाहिए था। ऊपर से वा रिव्यू पर ही पेनाल्टी दी गई फॉरेस्ट के हक में। दूसरे मैच में ब्रागा ने फ्रीबर्ग को 2-1 से हराया। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट 1, एस्टन विला 0, ब्रागा 2, फ्रीबर्ग 1। ये यूरोपा लीग में। कॉन्फ्रेंस लीग में क्रिस्टल पैलेस की शानदार एवे जीत। 3-1 से पैलेस ने शक्ता दुनियास्क को हराया। इस्माइल असा, दाइची कमादा और स्ट्रान लॉसन स्कोरर रहे। पहला गोल केवल 21 सेकंड बाद स्कोर किया गया इस्माइल असा के जरिए। ये कॉन्फ्रेंस लीग का फास्टेस्ट एवर गोल है। शक्ता 1, क्रिस्टल पैलेस 3। दूसरे सेमीफाइनल में रायो वालेकानो ने 1-0 से स्ट्रासबर्ग को हराया। आज मई महीने का पहला दिन प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला बर्नले से होगा। बर्नले तो रिलेगेट हो गया है, लीड्स यूनाइटेड रिलेगेशन जोन से दूर भागना चाहेगा। अभी लीड्स डेंजर जोन से 6 अंक ऊपर हैं। वीकेंड के दौरान जो मैच खेले जाएंगे सप्ताहांत के फिक्स्चर्स, ब्रेंटफोर्ड वेस्ट हैम, न्यूकासल यूनाइटेड ब्राइटन, वुल्व्स संडरलैंड, ये कल 6 बजे, फिर 8:30 बजे आर्सेनल का मुकाबला फुलहैम से होगा, फिर सुपर संडे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, महामुकाबला दो ऐतिहासिक दुश्मनों के बीच, ये खेला जाएगा 6:30 बजे 6:30 किक ऑफ। इससे पहले 5 बजे बोर्नमुथ क्रिस्टल पैलेस और 10 बजे एस्टन विला टोटनहम हॉटस्पर। टेनिस मैड्रिड ओपन में केवल 19 साल की मीरा अंद्रीवा फाइनल में पहुंची हाइली बैटिस्ट को हराकर। फाइनल में कल उसके सामने होगी मात कोस्ट्यूक जिसने अनास्ताजिया पुस्तापोवा को हराया। लड़कों में ब्लॉक्स ने कास्पर रूट को हराया। क्वार्टर फाइनल में वेरेव भी सेमीफाइनल में पहुंचा। सो आज सेमीफाइनल सीनर वर्सेस फिस, ब्लॉक्स वर्सेस वेरेव, ये सेमीफाइनल है मैड्रिड ओपन में। क्रिकेट आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से हराया। 20 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर केवल 155 रन बना पाया। विराट कोहली 28 रन बनाकर।
2: This is Radio Marches.
3: Nihao. Assalamu alaikum. Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shrotalandariki hrudayapurvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: 听众朋友大家好，今天是5月3日星期天，欢迎大家来到毛里求斯人民广播电台汉语普通话好歌送给您的节目栏目。我是今天的节目主持人金。今天我给大家准备了好多首优美动听的歌曲。好，下面让我们一起来收听第一首。

say.